जनमंच, विषय रहेगा गांव का शहरीकरण और ग्रामवासी। प्रतिभागी रहेंगे श्यामचरण, वीरेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार और संचालन रहेगा धारा सिंह का।

कल सुबह 8:15 पर होगा नमस्ते बरेली, सेहत की पाठशाला। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 9 बजे। 9:30 का समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है का, सोशल मीडिया पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद हम लेकर आएंगे सुबह 10 बजे। दिन में 1 बजे का समय रहेगा आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत का। 3:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आपकी बात आकाशवाणी के साथ कल लेकर आएंगे शाम 4 बजे। इस कार्यक्रम में आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं दिन में 2:30 पर। भजन संध्या होगी शाम 5:05 पर। वहीं 5:30 पर नारी संसार में चर्चा की जाएगी तनाव से दूर रहें विषय पर। श्रीमती सीमा से की गई वार्ता भी आप सुन सकेंगे जिसका विषय रहेगा समाज के विकास में विज्ञान की भूमिका। युवाणी हमेशा की तरह रहेगा 6 बजे इसका समय। ग्राम जगत में 6:30 पर चर्चा होगी बच्चों का टीकाकरण विषय पर। साथ ही श्री भगत सिंह से की गई भेंटवार्ता आपको सुनवाएंगे जिसका विषय रहेगा सतावर की खेती कर आमदनी बढ़ाएं। अक्षय वट इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 7 बजे जिसमें मिथिलेश श्रीवास्तव भेंटवार्ता चंद्र किरण से की गई जो है वो आपको सुनवाई जाएगी। और रात्रि 7:31 पर आपके अनुरोध भरे पत्रों के साथ लेकर आएंगे कार्यक्रम अनुरोध गीत। तो श्रोताओं ये तो थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेले होने वाले कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया हुआ है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। शाम के 5:05 होने को हैं और ये समय हुआ है भजन संध्या का। लीजिए सबसे पहली प्रस्तुति अनूप जलोटा की आवाज में।

संदेश से पहले आप सुन रहे थे भजन अनूप जलोटा की आवाज में, झीनी चदरिया जतन से ओढ़ो रे। और लीजिए पुनः अनूप जलोटा की आवाज में आप तक भेज रहे हैं ये भजन, राम नाम के मोती रख तू।

कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति अनूप जलोटा की आवाज में आपने सुनी, और इसी के साथ आज की भजन संध्या यहीं तक। आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। शाम के 5:30 हुए हैं और हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं कार्यक्रम मन भवन। कार्यक्रम मन भवन में पहला जो पत्र हम तक पहुंचा है, आप हैं अर्चना चौधरी निकट गुरुद्वारा सुभाष नगर बरेली से। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहला पत्र और शब्दावली हमने इनकी शामिल की है। बताते हैं क्या लिखा है इन्होंने और क्यों लिखा है। कार्यक्रम मन भवन में इनका ये पत्र और इनकी शब्दावली कुछ इस तरह से है। ये लिखती हैं, यूं तो सभी साथी रिश्तेदार आपके अपने होने का दम भरते हैं, लेकिन विपत्ति में ही इनकी पहचान होती है। शायद ईश्वर इसीलिए हमें विपत्तियों भरे दिनों से गुजारता है कि जिसे हम जो वाकई में हमारे शुभचिंतक हैं, जो वाकई में हमारे अपने हैं, हम उनकी पहचान कर सकें। क्योंकि जो परेशानियां और दुख का समय होता है, ऐसे उस समय में जो रिश्तेदार या जो पहले अपनेपन का दम भरते थे, ऐसे वो साथी यदि ऐसी घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं, तो वास्तविक रूप में आप ये समझ जाइए।

0: कि वही आपके सच्चे शुभ चिंतक हैं। ऐसे में हमें यही गीत याद आता है, सुख के सब साथी दुख में कोई नहीं। ये गीत गोपी फिल्म का है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। लीजिए, आपकी बहुत अच्छी ये शब्दावली है और इस बेहतरीन शब्दावली के लिए आपकी पसंद का ये गीत।
1: हाँ, उल्लू का पट्टा।

सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। वाकई में शायद ये विपत्तियाँ हमें ये बताती हैं कि वाकई में ये पहचान करने का समय है कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया। मनभावन कार्यक्रम में अगली जो शब्दावली हमने शामिल की है, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से जसविंदर कौर की, बहुत शानदार शब्दावली इनकी। लिखती हैं, कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही हंसते हुए उस फंदे को नहीं चूमा उन्होंने, यूं ही हंसते हुए उस फंदे को नहीं चूमा उन्होंने, जो कभी खेले जिस मिट्टी में, फिर मिले उसी मिट्टी में। लिखते हैं कि हमारे देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक समय था जब मुगलों का शासन रहा, फिर देश पर ऐसा समय भी आया जब अंग्रेजों का शासन रहा। पर इन सब के क्रूर शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने में हमारे देश की सबसे बड़ी जो ताकत थी, वो थी हमारी आपसी एकता। फिर आज हम क्यों जाति और धर्म में बटे हुए हैं? क्यों हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, हिंदू, मुसलमान में बटे हुए हैं? क्यों ना हम एकजुट होकर क्यों अपने देश को फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनाने का प्रयास करें और साथ साथ गाएं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। बहुत आपके सुंदर शब्दावली है और इस शब्दावली को पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है जैसे आपके मन के भाव खुद ही उतर कर आ गए हों। तो लीजिए, जसविंदर कौर जी आपके इन शब्दावली की लाज रखते हुए, उसकी पूरी रिस्पेक्ट करते हुए हम आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का।

मन भवन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से। और इसी क्रम में तीसरा ये पत्र हमने शामिल किया है, मरीन ड्राइव मुंबई से हैं महादेव राणा। ये लिखते हैं, हमारा शहर मुंबई बड़ी चकाचौंध वाला शहर है। यहाँ यूं तो हर सुविधा है, लेकिन सच कहूँ तो वो सुकून नहीं जो हमारे गांवों में है। गांव में पीपल या नीम का पेड़ जो हमारे आंगन में लगा होता है, उसकी शीतल छांव आज के एसी कूलर की हवा को भी उतना सुकून भरा नहीं बनाते। काश हम शहरों की ओर भागने के बजाय अपने गांव, अपनी मिट्टी की ओर भागें और वहां का रुख करें और गुनगुनाएं ये गीत। तो देखिए कौन सा गीत है, महादेव राणा जी जो अपनी शब्दावली के आधार पर सुनना चाहते हैं, पहुंचाते हैं आप तक।

0: कार्यक्रम मनभावन में इन्हीं पत्रों को हमने शामिल किया और इन्हीं पत्रों के साथ हम अपने इन श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी अच्छी शब्दावली के साथ आपने हम तक अपने पत्र भेजे। आप भी ऐसी ही सुंदर सी शब्दावली के साथ हमें पत्र लिख सकते हैं मनभावन कार्यक्रम में। पता है कार्यक्रम मनभावन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, बरेली का पिन नंबर है 243001। अब कार्यक्रम मनभावन से हमें दीजिए अनुमति। समय मिलाइए शाम के 5:45 और 27 सेकंड। समय हुआ है एक मुलाकात कार्यक्रम का, जिसमें आज डॉक्टर सौरभ कुमार अग्रवाल से बातचीत की है मिथिलेश जी ने।
1: नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव और जैसा कि आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हम हर बार आपके रूबरू किसी ऐसी शख्सियत लेकर आते हैं जो हमारे समाज में कुछ प्रेरणाप्रद काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ कुमार अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के।

0: स्टूडियो में।
1: धन्यवाद सर।
0: तो हम अग्रवाल जी के बारे में बता दें कि पहले तो वो एक समाज सेवी हैं और वो इसी रूप में जाने जाना चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे विद्यालयों के वो प्रबंधक हैं, और यही नहीं जो कई सारे स्पोर्ट्स के एसोसिएशन हैं, जैसे कि पैरा जो खेल होते हैं जो दिव्यांगों के लिए होते हैं उनका एसोसिएशन है, उसके चेयरमैन हैं। इसके अलावा बरेली का जो चेस एसोसिएशन है उसके भी चेयरमैन हैं, और एक नया खेल जो है पंजा लड़ने वाला, उसको इंग्लिश में सर क्या नाम दिया गया है?
1: आर्म रेसलिंग।
0: जी, तो आर्म रेसलिंग के जो है एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं। तो इसके अलावा वो काम कर रहे हैं सोशल सर्विस का, उसमें भी फोकस है महिलाओं के सैनिटेशन पे। जी हाँ, और गांव-गांव में महिलाओं को जागरूक करते हैं स्वच्छता के लिए। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले उन्हीं से उनके बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, शुरुआती दिनों के बारे में, कि कैसे आपने शुरुआत की और यहाँ तक कैसे पहुँचे।
1: देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे, मुझे मौका दिया श्रोताओं से बात करने का। इस कार्यक्रम, इस दिशा में जो मैंने कार्य करना शुरू किया, इसकी शुरुआत आज से 5 वर्ष पूर्व 2020 में हुई थी। उससे पहले मैं विद्यालय, जैसा आपने पहले भी बोला, विद्यालय चलते हैं मेरे, वो आज भी चलते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ समाज के हित में काम करना चाहिए। और 2020 में लाल किले से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपनी स्पीच में महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जबरदस्त वक्तव्य दिया था, जिसमें उन्होंने एक बात कही थी कि अगर देश की महिला स्वस्थ होगी और बलवान होगी तभी देश तरक्की करेगा। वो बात मुझे दिल को छू गई और मुझे लगा कि मुझे भी कुछ उस दिशा में काम करना चाहिए। उसी जोर में उन्होंने एक बात और भी कही थी कि महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए सैनिटरी पैड, मेरा मानना ये है कि एक बहुत एसेंशियल, बहुत जरूरी चीज है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 75-80% बीमारियां जो हैं गंदा कपड़ा के इस्तेमाल करने से होती हैं, और आज भी ये हमारे देश का दुर्भाग्य कह सकते हैं या के लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं इस बात से।
0: बिल्कुल, बिल्कुल। अशिक्षा और
1: अशिक्षा
0: की वजह से जागरूक नहीं,
1: जागरूकता कम है
0: जी। क्यों, कई सारे मिथक भी हैं।
1: हाँ, जी, बिल्कुल आपने बात सही कही। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस दिशा में काम करूं। हालांकि बहुत सारी मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसमें, क्योंकि एक आदमी होते हुए या मर्द होते हुए एक औरतों के पास जाना कठिन काम है।
0: हाँ, और इस विषय को काफी ढका छुपा के रखा जाता है।
1: तो आप, मैं अगर आगे बात करूं इसकी, तो मुझे याद है जब मैं पहली बार गांव में गया था तो मुझे बिल्कुल ही धक्के देकर बाहर निकालने की नियत हो गई थी लोगों की कि ये कैसा व्यक्ति आ गया और किस तरीके की धारणा लेके आया है, हमारी औरतों से कैसे बात करने की जरूरत भी कर रहा है। और पहली बार में शायद 2-4 महिलाएं बड़ी मुश्किल से मैं इकट्ठी कर पाया था, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें लगा कि मेरा और कोई ध्येय नहीं है, मैं उनकी अच्छाई के लिए करना चाहता हूं, मैं कुछ देना चाहता हूं उनको, और देने के साथ मैंने फिर अपने साथ सैनिटरी पैड का जरूर बैग लेके जाता था कार्टन में भर के, और वो मैं उन्हें बांटता था। तो कई बार तो ऐसा हुआ मुझे सुनने में मिला कि साहब फेंक दिया गया या इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन जैसे कहते हैं कि आप निरंतरता अगर रखें और अगर अब तरह दृढ़ता रखें।
0: सबसे पहले कौन से गांव में गए?
1: मैं सबसे पहले गया परगमा गांव।
0: अच्छा अच्छा।
1: परगमा गांव को मैं जानता था पहले से। हाँ। और वहां के लोगों को थोड़ा सा, मतलब मैं परिचित था क्योंकि एक बार मैं कभी वहां पे किसी कारणवश गया था, तो मुझे उस जगह का रास्ता मालूम था। सिर्फ इतना जानता था मैं कि रास्ता मुझे मालूम है, तो मैं अचानक वहां पहुंच गया, लोगों को नहीं जानता था। जब मैं वहां पहुंचा तो फिर जो मैंने आपको बयान करा वो यही हुआ कि, लेकिन ईश्वर की कृपा कहेंगे या लोगों का, मैं ये कहूंगा प्रेम कहेंगे, कि धीरे धीरे उन्होंने मुझे अपनाना शुरू कर दिया। और आज ये हालत है कि होली भी वो मेरे साथ मनाना चाहते हैं, दिवाली भी वो मेरे साथ मनाते हैं, हर त्योहार ईद भी मेरे साथ मनाते हैं, और कोई ऐसा त्योहार नहीं है जिसमें मैं उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाता या उनके घर नहीं जाता। मतलब वो मेरा परिवार हो गया,
0: परिवार। जी बिल्कुल, इसी भावना से, एक्चुअली समाज सेवा में भावना ही यही होती है कि पूरा देश, पूरा समाज हमारा एक परिवार है, उसकी सेवा करनी है
1: जी।
0: तो आपने जैसे बताया कि आपको प्रेरणा मिली माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश से, उसके पहले भी कहीं ना कहीं मन में समाज सेवा की भावना छुपी होती है, कहते हैं कि खून में है या जीन्स में है कहीं ना कहीं, तो बचपन में भी कुछ ऐसा था आपके साथ?
1: बचपन में देखिए, मैं एक समृद्ध परिवार से बिलोंग करता हूँ, और लेकिन मेरे पिताजी हमेशा ये बात मुझे सिखाते थे, जो आज ऊपर आज मेरे साथ नहीं है।

0: लेकिन उन्होंने हमेशा ये बात मुझे समझाई और वो मेरे जहन में हमेशा बैठी कि अपने लिए तो दुनिया करती है, दूसरों के लिए करके देखो उसमें ज्यादा मजा आएगा। और उस समय उन्होंने एक बात और मुझसे कही थी जो शायद मैंने वो नहीं अपनाई कि बेटा दान करना तो किसी को बताना मत,
1: गुप्त दान करना।
0: वो शायद उनकी एक कहने का शैली थी या जो भी था। मेरा मानना, मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज ये करा, मेरा ये कहना ये है कि दान करो, बताओ भी जरूर, जिससे लोग प्रेरित हों। दिखावे के लिए नहीं करो, लेकिन प्रेरणा देने के लिए उसको जरूर दिखाओ।
1: बिल्कुल, ताकि और अकेले हम कितना कर सकेंगे,
0: हम अकेला
1: और प्रेरणा दूसरों को मिलेगी तो और लोगों की भी सेवा होगी। मान लीजिए बरेली आसपास है कहीं और हमें श्रोता कोई सुन रहा होगा, उनको प्रेरणा मिल सकती
0: है।
1: बिल्कुल। अब बात आती है कि जिसे समाज सेवा करते हैं और आप स्कूल भी मैनेज करते हैं और इसके अलावा एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं।
0: जी, जी जी।
1: तो ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं, खासतौर पे जो एसोसिएशन की बात है?
0: सर मजा आता है। देखिए, अगर आदमी में फिर वही बात, मैं कहने जा रहा हूँ कि काम करने का जज्बा अगर हो तो क्या क्या क्या नहीं पॉसिबल है या क्या नहीं कर सकता इंसान। लेकिन मुझे अंदर से बहुत मजा आता है, मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है मैं कुछ करता रहूं, कुछ सेवा भाव करता रहूं। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैं बड़ी कठिनाइयों से गुजरा। ऐसा नहीं है कि मैं आज जो है संपन्नता में हूँ तो मेरा कोई जिंदगी ऐसी ही थी। मैंने वो समय देखा है जब मेरे पास कुछ भी नहीं था शायद। तो मैं हमेशा इस बात को ध्यान रखता हूँ कि आज भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी समाज को कुछ सेवा भाव दे पाऊं। और उसी का ये नतीजा है कि जो है मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। खेलों के प्रति रुचि के पीछे एक कहानी और है, क्योंकि मैं बचपन में खिलाड़ी बनना चाहता था।
1: अच्छा अच्छा।
0: क्रिकेटर बनना चाहता था, चेस प्लेयर बनना चाहता था। दो तीन खेलों में बड़ी रुचि थी, अच्छा मेरा टैलेंट था। लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से, कुछ आर्थिक तंगियों की वजह से मैं शायद आगे नहीं बढ़ पाया।
1: पहले ये भी तो था कि वो कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे तो होगे
0: खराब।
1: तो फिर अब जाहिर सी बात है हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता था, इंजीनियर बनाना चाहता, वकील बनाना चाहता, डॉक्टर बनाना चाहता, आईएएस बनाना चाहता था।
0: बिल्कुल।
1: वो जो कोई खेल रहा है तो ये लगता है कि भाई वो तो बिगड़ रहा है,
0: समय खराब कर रहा है।
1: जी,
0: तो वो एक बहुत बड़ी वजह रही कि मुझे ये लगा कि चलो मैं नहीं कर पाया कुछ शायद, तो मुझे जो जो बच्चे करना चाहते हैं उनको तो मौका देना चाहिए। तो मुझे सरकार ने बड़ी अच्छी कुछ संस्थाएं दी जिसका दायित्व मुझे दिया, और आज भी मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा उन खेलों को बढ़ावा दे सकूं। और जो बच्चे जब खेलते हैं और उनके चेहरे पे जो खुशी आती है जब वो मेडल लेके आते हैं या जीतते हैं या वो हार भी रहे तब भी जो खेल रहे हैं उसका एक मजा अलग।
1: तो अभी जो नया खेल इंट्रोड्यूस हुआ है पंजा लड़ाने वाला, आर्म रेसलिंग, इसके बारे में कुछ बताइए।
0: बड़ा रोचक खेल है सर, हम लोगों ने शायद बचपन में सभी लोगों ने खेला है किसी न किसी समय पे। और पहले ऐसे हंसी मजाक में लिया जाता था पंजा लड़ाने के, जोर आजमाइशी करनी है,
1: शर्त लगती थी हाथ गिरा दो
0: साहब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आज की तारीख में सरकार ने उसको एक स्पोर्ट बना दिया है और ये बहुत जल्दी इंटरनेशनल स्पोर्ट बनने वाला है।
1: अच्छा।
0: इसकी बॉडीज बन रही हैं और बरेली में इसकी बॉडी जैसे ही बनी तो सरकार ने मेरे बारे में सोचा। और बड़ा हर्ष होता है मुझे बताते हुए कि अभी जैसी मुझे ये दायित्व मिला उसके कुछ ही दिनों के अंदर में मैंने एक टूर्नामेंट बरेली में करवाया जो कि अपने विद्यालय में हुआ था, जिसमें करीब 550 बच्चों ने,
1: अच्छा
0: 550 बच्चों ने पहली बार में विद इन 3 डेज रजिस्ट्रेशन करा के फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट किया। और मुझे इतना उत्साह देखने को मिला बच्चों में जिसमें उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग तक नहीं थी क्योंकि भाई पहली बार वो स्पोर्ट खेल रहे थे। लेकिन मुझे लगा कि स्पोर्ट में बहुत बहुत जान है और इसमें बहुत आगे बढ़ा जा सकता।
1: तो इसमें ये भी तो है ना, आपको कुछ खास, जैसे क्रिकेट है उसमें बैट चाहिए, बॉल चाहिए, इसमें तो बस अपना हाथ चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और सामने वाले से लड़ाना और आपके हाथ में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यही चीज है। तो इसमें कुछ क्या नियम भी बनाए गए हैं?
0: नहीं, नियम बनाए गए हैं, बिल्कुल नियम है। इसकी एक टेबल होती है बकायदा जो कि एक सरकारी मानकों के हिसाब से टेबल होती है, उसमें दो हैंडल्स होते हैं, उसको पकड़ के अच्छा। बच्चे को हाथ लड़ाना होता है और एक समय सीमा तो नहीं होती इसमें, लेकिन एक बाउट क्योंकि बहुत बच्चे ज्यादा देर टिक नहीं पाता, 8-10 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड तक वो बाउट चलती है। लेकिन बेसिक रूल्स यही है कि आपको हाथ अपना जमाए रखना है और एक हाथ पकड़ना होता है, उसमें एक हैंडल लगा हुआ होता है,
1: हैंडल लगा हुआ होता है।
0: उसके सरकारी मानक है,
1: कहीं ऐसा नहीं जैसे आमतौर पे जो गली मोहल्लों में सब होता था एक हाथ पीछे रखते थे।
0: नहीं, ऐसा
1: नहीं, वैसा नहीं, सामने हैंडल रहेगा,
0: हैंडल रहेगा, हैंडल से आप पकड़िए, दूसरे हाथ से आप ऐसे आप लड़ाइए उसको पंजे को, बकायदा रूल्स के हिसाब से वो करते हैं उसके बकायदा।

0: ट्रेनर्स भी हैं हमारे पास, और बहुत जल्दी जो है हम उसको जो है और भी स्कूल्स में, अब जैसे समर वेकेशन खत्म होगी उसके बाद हम इसको और प्रसारित करने की कोशिश करेंगे कि बरेली या आसपास के क्षेत्रों में इसको और बढ़ा सकें और बच्चों में और रुचि पैदा कर
1: तो
0: सकें।
1: ये अभी क्या किस लेवल तक पहुंचा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ मैच
0: अभी
1: वैच हो?
0: डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, नेशनल लेवल पे,
1: नेशनल लेवल पे?
0: नेशनल लेवल पे है, खेल हो रहा है,
1: अच्छा,
0: लेकिन अभी इतना प्रचलित नहीं हो पा

0: के क्षेत्रों में इसको और बढ़ा सकें, बच्चों में और रुचि पैदा कर सकें।
1: तो ये अभी क्या किस लेवल तक पहुंचा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ मैच
0: अभी
1: वैच
0: डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, नेशनल लेवल पे,
1: नेशनल लेवल पे,
0: नेशनल लेवल पे है, खेल हो रहा है,
1: अच्छा,
0: लेकिन अभी इतना प्रचलित नहीं हो पाया,
1: प्रचलित नहीं
0: है, ये बस इतना फर्क
1: जी
0: है।
1: जी जी तो क्या बरेली से भी कोई निकला है कोई?
0: हाँ, बरेली से दो बच्चे हमने अभी सेलेक्ट किए थे जो हमारा टूर्नामेंट हुआ था, उसमें से बच्चे तो खैर ज्यादा सेलेक्ट हुए थे, लेकिन उसमें से दो बच्चे आगे हमने स्टेट में अभी भेजे,
1: स्टेट में भेजे। अच्छा, और क्या इसमें कुछ एज लिमिट भी है क्या?
0: हाँ, एज लिमिट है सर, एज लिमिट इसमें आप ये समझिए कि छोटे से छोटा बच्चा, इसमें आप 7-8 साल से लेके और इसमें ओपन टूर्नामेंट तक है, आप 60-70 साल तक की उम्र तक इसमें अलाउड है खेल।
1: अच्छा,
0: सरकार की तरफ से,
1: सरकार की तरफ से, बस ये है कि अलग अलग ग्रुप,
0: अलग अलग ग्रुप्स हैं। हाँ, इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें कई चीजें होती हैं कि वेट कैटेगरी होती है, वेट कैटेगरी के साथ लेफ्ट हैंड राइट हैंड,
1: अच्छा,
0: ये भी डिसाइड होता है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि अगर एक आदमी लेफ्ट हैंडर है तो वो लेफ्ट हैंड से खेलेगा, राइट हैंडर है तो राइट हैंड से खेलेगा। एक आदमी दो हाथ से भी खेल सकता है।
1: अच्छा,
0: वो अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराता है कि एक पर्टिकुलर, पहले तो आ गई एज, उसके बाद आ गया वेट, उसके बाद आ गया हाथ।
1: अच्छा,
0: तो वो अपना रजिस्ट्रेशन लेफ्ट हैंड में भी करा सकता है, वो अपना रजिस्ट्रेशन राइट हैंड में भी करा सकता है।
1: अच्छा अच्छा,
0: आप चाहें तो मैं दो बाउट खेल सकता
1: हूं, कई सारे कैटेगरीज में आप जा सकते हैं। और लेकिन इसमें है कि एज ग्रुप, मान लीजिए कोई बच्चा, बच्चा क्या कहेंगे, युवा 25 साल का युवा है, वो क्या 55 साल के किसी व्यक्ति के साथ खेल सकता है?
0: नहीं,
1: एज ग्रुप का ध्यान
0: रखें, एज ग्रुप का,
1: 25 साल का है तो 25 साल के साथ,
0: बिल्कुल,
1: और वेट का भी ध्यान,
0: वेट का ध्यान,
1: वेट का तो खैर ज्यादातर गेम्स में रखा जाता है,
0: जैसे जैसे वेट आपका बॉक्सिंग होता है,
1: हाँ हाँ,
0: तो वेट कैटेगरी डिफाइंड होती है, वैसे सिमिलरली इसमें वेट कैटेगरी डिफाइंड।
1: ठीक ठीक ठीक, तो ये अच्छा खेल सरकार ने निकाला है, काफी पारंपरिक खेल को मान्यता दी जा रही है।
0: जी जी,
1: तो काफी इंटरेस्टिंग भी है, आपके जरिए जो है ये खबर सामने आ रही है कि सरकार ने दी रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे श्रोता हैं वो इंटरेस्टिंग इस खबर से काफी लाभान्वित भी होंगे, है ना। और जो आपने, आपका जो व्यक्तित्व है उसमें कई सारे कहें तो विमाएं हैं, डायमेंशंस हैं कई सारे, समाज सेवा में भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बताइए, कुछ आप एक्सपेरिमेंटल होंगे, आपको पर्सनालिटी को देखते हुए लगता है कुछ?
0: शिक्षा में देखिए, मैं ये बात तो बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि बरेली में अगर पहला रोबोटिक्स फुल फ्लेज लैब किसी ने शुरू करा था तो वो पहला हमारा था। हम पहली बार इसको, एक टेक्नोलॉजी को बरेली में लेके आए थे, तब तक कोई जानता नहीं था कि रोबोटिक्स लैब, जैसे आज तो बहुत प्रचलन है इंस्टीट्यूट का, वो एक नई चीज हमने शुरू करी थी। स्मार्ट बोर्ड्स जो आज हर विद्यालय में आपको देखने को मिल जाएंगे, वो स्मार्ट बोर्ड्स का शुरुआत हमने शुरुआत करी थी। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम लोगों ने पहली बार शुरुआत करी, और आज भी मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कुछ नया करूं जिससे बच्चों का बेनिफिट हो सके हमेशा।
1: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप इनोवेटिव लोगों को अपने इनोवेशन से और लाभान्वित करते जाएंगे और नई नई चीजें जो है बरेली के जो लोग हैं उनके सामने लेके आएंगे, और न केवल समाज सेवा बल्कि जो इस तरह के खेल भी हैं और आप शिक्षा का भी काम कर रहे हैं उसमें भी बरेली वासियों को उससे आप लाभान्वित करेंगे। आकाशवाणी स्टूडियो आने के लिए और इतने महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक मुलाकात, हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 एफएम पर। समय मिला ही है शाम के पूरे 6 बजे हैं। शाम के इसी समय के साथ प्रज्ञा पाठक हमारे साथ उपस्थित हो गई हैं लेकर कार्यक्रम युववाणी। तो आइए इनके साथ सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: देयर इज होप। अगर उम्मीद ना होती तो कोई नया आविष्कार ना होता, कोई उम्मीद ना होती तो नई खोज ना होती। हम सब देश का भविष्य हैं और आपका उम्मीद से भरा होना पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सो कहते हैं ना, घिरे हो चाहे अंधेरे घने, घिरे हो चाहे अंधेरे घने, उम्मीद का दिया जलाए रखना, मंजिल मिलेगी तुम्हें एक दिन, मंजिल मिलेगी तुम्हें एक दिन, कदम आगे तुम बढ़ाए रखना। मुश्किलें आएंगी आकर चली जाएंगी, मुश्किलें आएंगी आकर चली जाएंगी, अपने हौसलों को तुम बुलंद बनाए रखना। तो आज के इस खास दिन पर, इंटरनेशनल डे ऑफ होप, हम सब अपने आप से एक वादा करते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी हम निराश नहीं होंगे और उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे हमने वादा कर रखा है आपसे कि आपका एंटरटेनमेंट हम भरपूर करेंगे, क्योंकि भाई आज है संडे और आज हम लेकर आते हैं हेलो फ्रेंड्स। तो हम हेलो फ्रेंड्स की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले हम हमारे श्रोताओं के लिए एक लेकर आए हैं खास बातचीत साक्षी ठाकुर के साथ।
1: चलिए युवा साथियों, ऐसे ही हम रोजाना किसी न किसी युवा साथी को आपके बीच में लाते रहते हैं। आज भी हमारे साथ एक खास युवा साथी जुड़ी हैं। इनसे जानते हैं पहले इनका नाम, फिर इनसे जानते हैं इनके करियर की जर्नी के बारे में, ये क्या कर रही हैं, और हमारे युवा साथियों को ये अपनी जर्नी के बारे में बताएंगी, और जो भी युवा साथी इनके करियर लाइन को चुनना चाहते हैं वो चुन सकते हैं। क्या नाम है आपका, आप हमारे युवा साथियों को बता दीजिए।
2: मेरा नाम साक्षी ठाकुर है, नीलम सिंह।
1: साक्षी ठाकुर, पहले तो आप ये बता दीजिए आप पढ़ाई में क्या कर रही हैं, ताकि हमारे सारे युवा साथी जान पाएं कि आप किस तरीके से आपने अपने कोर्स की स्टार्टिंग की है।
2: 12th मैंने मीजन से किया, संत मंगलपुरी इंटर कॉलेज से।
1: अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या किया?
2: तो उसके बाद मैंने BSc की बायो से।
1: अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया?
2: मुझे उसके बाद नर्सिंग में ज्यादातर स्कोप दिखाई दिया। ज्यादातर, सबसे ज्यादा स्कोप देखो तो नर्सिंग लाइन में ही है। कोई भी कोर्स ले लीजिए, NM, GNM, BSc, छोटे से लेके बड़े तक बहुत स्कोप है इसमें। सबसे ज्यादा अगर आप प्राइवेट भी करेंगे जॉब तो आपके 10-15 हजार से कहीं नहीं हुए हैं
1: जी। आजकल वैसे भी हम साक्षी जी देख रहे हैं कि नर्सिंग के लाइन में बच्चे ज्यादा जाना चाहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, इन सबका देखिए सारे बच्चों का मन करता है कि वो एक हायर स्टडी करें, पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते खर्च करने के लिए कि हम इतने पैसे लगा पाएं। पर उसी से रिलेटेड, जैसे डॉक्टर में MBBS करिए पहले या फिर आप BMS करिए, तो उन सब में काफी पैसे लग जाते हैं। कई सारे बच्चे उस चीज से बचना चाहते हैं कि वो कम पैसों में उसी लाइन में जा पाएं। तो ये नर्सिंग का जो लाइन है वो काफी अच्छी लाइन है उन लोगों के लिए जो भी डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हैं। तो आजकल बच्चे बहुत ज्यादा इस लाइन के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, और बहुत अच्छा करियर ऑप्शन भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अट्रैक्ट हो रहे हैं या इसमें करियर नहीं है, बहुत अच्छा करियर है। जिस तरीके से आजकल मेडिकल फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन नर्सिंग में NM, GNM इन सब के लिए वैकेंसीज वगैरह भी ज्यादा निकल रही हैं, और बहुत सारे बच्चे भी इसमें ग्रो कर रहे हैं अपना करियर। तो आप बताइए, आपने फिर उसके बाद आपने क्या करा, BSc के बाद आप इसमें कैसे गई?
2: BSc के बाद हमने ANM में सोचा कि मतलब कम पैसों में अच्छा कोर्स
1: जी,
2: और इसकी वैकेंसी भी ज्यादातर हर साल निकलती।
1: तो फिर आपने BSc के बाद इसका एंट्रेंस एग्जाम दिया?
2: नहीं, इसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाता।
1: अच्छा, अभी आप कहाँ से कर रही हैं ANM?
2: फतेहगंज
1: से। अच्छा, जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे?
2: उसके लिए भी अप्लाई करते हैं, फॉर्म वगैरह, एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं तो मिल जाता है कॉलेज।
1: अच्छा, तो उसमें पेपर होता है उसके लिए?
2: हाँ, पेपर होता है उसके लिए।
1: अच्छा, अगर
2: क्वालिफाई कर लेते हैं तो कोई कम पैसे में हो जाता
1: है। अच्छा अच्छा, ये कितने साल का होता है?
2: ये 2 साल का होता है।
1: इसमें ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है?
2: हाँ, ट्रेनिंग दी जाती है।
1: अच्छा,
2: जैसे इंस्टीट्यूट के हिसाब से है, कुछ इंस्टीट्यूट में 6 मंथ के लिए होता है फर्स्ट ईयर में, लेकिन कुछ हमारे वाले में जो है उसमें 2 मंथ क्लिनिकल कराया गया था, बाकी डेज ओनली पढ़ाई। तो उसमें CSC 15 दिन CSC, 15 दिन PSC, फिर डिस्ट्रिक्ट 1 मंथ के लिए लगी थी, और सेकंड ईयर में 6 मंथ क्लिनिकल चलती, बाकी 6 मंथ पढ़ाई पेपर।
1: अच्छा, क्लिनिकल से जैसे ये है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसके साथ साथ मिलती रहती है, ये भी जरूरी है। अच्छा, जैसे कि आप अभी परसुइंग में हैं, फिर भी आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको के बाद करियर ऑप्शन, मतलब आपको, आपने ये करा है, इसके बाद आप क्या देखती हैं कि आपका करियर कहाँ पर जाएगा? आप

हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल आदाब बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आभार आप सभी का। आपकी दोस्त प्रज्ञा पाठक लेकर हाजिर हुई है आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम युववाणी। दोस्तों आज के दौर में पढ़ाई का प्रेशर, करियर की चिंता और आगे बढ़ने की होड़ में हम कई बार निराश हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए उम्मीद कोई कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक हमारे अंदर उम्मीद है तब तक हर एक शुरुआत एक अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा है। स्टीफन हॉकिंस ने कहा था वेयर देयर इज लाइफ

0: प्राइवेट फॉर्म डालेंगी या इसके गवर्नमेंट फॉर्म भी आते हैं, आप किस तरीके से अप्लाई करेंगी?
1: मैंने सोचा है पहले ये था, एनएम के बाद आप कोई पोस्ट नर्सिंग वगैरह
0: जी
1: कोई कोर्स के लिए ऑप्शन नहीं था। अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि एएनएम के बाद आप पोस्ट बीएससी भी कर सकते हैं, पोस्ट जीएनएम भी कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं कुछ ना कुछ। हाँ सोचा है कि और भी करना, पोस्ट बीएससी वगैरह के
0: जी
1: बारे में सोचा है।
0: अच्छा, जो मतलब आगे अभी भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो ये कर सकते हैं। अच्छा साक्षी, एक बात बताइए, जो भी बच्चे जैसे अब उन्होंने जैसे एएनएम कर लिया, उसके बाद वो किस तरीके से इसमें जॉब में जा सकते हैं? इसके बाद आप कंप्लीट करने के बाद जॉब आपके पास खुद से आती है या आपको अप्लाई करना पड़ता है? आप प्लीज वो बताइए, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट में भी इसका मौका मिलता है?
1: इसमें आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन
0: अच्छा
1: पहले ये था, वैकेंसीज आते ही जिनका नंबर आ जाता है तो उनकी लग जाती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने पैट पैट लागू कर दिया है कि पैट करना, पैट कंपलसरी है करना, तो
0: अच्छा
1: पैट के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। उसके बाद अगर नंबर आता है तो अच्छी बात है, वरना तो प्राइवेट के लिए तो कहीं से भी करो।
0: अच्छा प्राइवेट के लिए हमेशा ऑप्शन खुला है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए आपको फाइट मारनी पड़ेगी। उसमें पेट का जो एग्जाम है वो पहले क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप
1: तो उसके
0: एप्लीकेशन
1: बाद
0: डाल सकते
1: ही
0: हैं।
1: हाँ,
0: अच्छा,
1: पहले ये नहीं था, इस ईयर से कर दिया है।
0: इस साल से ये कर दिया है, जरूरी कर दिया है। तो पहले जिन भी बच्चों ने करा है उनके लिए ये काफी अच्छा रहता था कि वो डायरेक्ट उनका वहां पर सिलेक्शन हो जाता था।
1: हाँ
0: साक्षी जी, आज आपसे बातचीत की और आपने हमें अपने करियर के बारे में जानकारी दी कि आप किस तरीके से इस करियर ऑप्शन को चूज करके खुश हैं और आगे अपने करियर के लिए ग्रो करेंगी। और आपने बताया भी कि जो भी बच्चे अगर इस करियर में जाना चाहते हैं वो किस तरीके से अलग अलग लाइन को चूज कर सकते हैं, और या फिर अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर अपनी जॉब को भी स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ हमारे जितने भी युवा साथी आपको सुन रहे होंगे उनको इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। जब आपसे बातचीत की हमें बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: डेंगी, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: दोस्तों अब चलते हैं हमारे पहले कॉलर की तरफ कि हेलो फ्रेंड्स में पहले कॉलर देखिए कहाँ से जुड़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स में आपका स्वागत है। आपकी बात प्रज्ञा पाठक के साथ हो रही है। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या शुभ नाम है आपका?
5: जी मेरा नाम सुल्तान रजा है, मैं कुछ सब्जी मंडी बरेली से बात कर रहा हूँ मैं।
4: क्या बात है, बरेली के श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। आप पहले तो ये बताइए कैसे, क्या हाल चाल है और आप? जी जी
5: जारी है और आप लोगों की दुआएं हैं, आकाशवाणी बरेली की गीतों की अंदर मिल रही है हम लोगों को।
4: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। आप ये बताइए आपका वैसे करते क्या है सुल्तान जी आप?
5: मेरे की शॉप है कपड़े की, मैं वहीं पे जॉब करता हूँ।
4: अच्छा अच्छा,
5: कपड़े मिलते हैं मेरे पास।
4: अच्छा आपके, आप कपड़े की शॉप पे काम करते हैं। आप ये बताइए कि इस वक्त जैसे आपने बताया गर्मी का प्रकोप है, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से कि इस वक्त कौन सा कपड़ा उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है, मिलेगा उससे पहनने से, ताकि उनको गर्मी कम लगे, उनको
5: इस
4: शरीर पे नुकसान ना हो?
5: अगर
4: जी
5: हम
4: जी
5: बात करें कपड़े की, तो कॉटन का चाहे वो लोवर हो या टी शर्ट, इसमें ही गर्मी बिताए
4: जी
5: अच्छा है, क्योंकि ये कपड़ा गर्मी में ठंडक देता है,
4: जी
5: पसीने को भी सोख लेता है, तो ज्यादा ज्यादा हम इसके लोवर है टी शर्ट है तो ये कॉटन का ही यूज करें हम।
4: बिल्कुल सही बात कही आपने, जितना हम कॉटन का प्रयोग करेंगे वही हमारे शरीर के लिए भी बेनिफिट मिलेगा उससे।
5: कॉटन के कपड़े ज्यादा फैंसीबल नहीं होते हैं, लेकिन जो आराम देते हैं वो शायद सुकून बहुत मिलता है कपड़े पहन के।
4: जी बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि कॉटन के कपड़ों से क्या होता है आप एकदम हल्का रहता है शरीर पे बिल्कुल, तो उसकी वजह से कई बार आपको पसीना आता है गर्मी में, तो वो भी सोख कर लेता है, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और कॉटन का कपड़ा इतना हल्का रहता है, रैश भी नहीं करता आपके बॉडी पर। तो हम तो अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि जितने भी श्रोता इस वक्त कॉटन के कपड़ों पर और हल्के रंग के कपड़े पहने,
5: हल्के कलर पहने,
4: जी
5: जी
4: जी
5: मैं अपने कलर हल्के पहने ज्यादा अच्छा है, क्यों हल्के कलर जो होता है वो गर्मी को कम लेता है और डार्क कलर
4: ज्यादा
5: खींचता है अपनी तरफ से।
4: जी जी बिल्कुल।

0: लिनन हो गया, कॉटन हो गया, इस टाइप का जो हल्का कपड़ा होता है मलमल का, बिल्कुल वही
1: जी,
0: पहने,
1: रियोन
0: कॉटन
1: है
0: मलमल। जी
1: ज्यादा,
0: जी
1: और कॉटन आपका जाम कॉटन हो गया, ये सारे कपड़े जो हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे हैं ये गर्मी के
0: जी
1: साथ, खासतौर गर्मी के मौसम में।
0: जी सुल्तान जी, आप ये बताइए, आज आपने हेलो फ्रेंड्स में कॉल किया है, क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: तो मैम ये गाना है, बलमा सॉन्ग है,
0: जी
1: बार बिगड़ मंगवाते तू अंगूरों पन है अरमा ओ बलमा।
0: जी जी जरूर सुनवाएंगे आपकी पसंद से ये सॉन्ग, और अभी आ रहा है आपके रेडियो सेट पे आपकी पसंद से ये सॉन्ग। सुनते रहिएगा
1: जी
0: साथियों
1: नमस्कार मैम।
0: युवाणी, नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो फ्रेंड्स, में आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या शुभ नाम है आपका? आपकी बात प्रज्ञा पाठक के साथ हो रही
1: मैं
0: है।
1: परी बात कर रही हूँ, बरेली से।
0: कैसी हैं परी आप?
1: कैसे
0: सब बढ़िया है। ये बताइए, क्या करती हैं आप?
1: जी? मैं पढ़ाई करती हूँ,
0: अच्छा, कौन से क्लास में है?
1: फर्स्ट ईयर में।
0: अच्छा, तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई परी?
1: पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, अभी नया नया एडमिशन हुआ है।
0: अच्छा, आपने क्या लिया है, कौन से सब्जेक्ट हैं आपके पास?
1: अंग्रेजी है और साइंस है और गृह विज्ञान।
0: आपको किसमें ज्यादा रुचि है?
1: सबसे ज्यादा इंग्लिश अच्छी लगती है।
0: अच्छा, इंग्लिश अच्छी लगती है।

0: है। तो बड़े होके आप लगता है इंग्लिश में कुछ करना चाहती हैं, इंग्लिश की डिग्री लेके क्या करना चाहती हैं आप इंग्लिश में?
1: मैं टीचर बनना चाहती हूँ।
0: जी बढ़िया बढ़िया। अच्छा आप ये बताइए, आपने हेलो फ्रेंड्स में कॉल किया है, आप क्या सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं बजरंगी भाईजान मूवी का सुनना चाहूंगी।
0: ठीक है, आपके पसंद से आपके रेडियो सेट पे सुनाएंगे हम ये सॉन्ग। आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो हेलो फ्रेंड्स, में आपका स्वागत है। आपकी बात प्रज्ञा पाठक के साथ हो रही है। क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी, मैं उर्फी जावेद बात कर रही हूँ। अरे
0: ओहो उर्फी जी, आपका कॉल ना आया, ऐसा कैसे हो सकता है? बताइए आप कैसी हैं?
1: एक्चुअली वो क्या है ना, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। मैं अपनी जॉब में बिजी होती हूँ, तो इसलिए जब मुझे टाइम मिलता है संडे को ही खाली रहती हूँ, तो मैं जरूर कॉल लगाती हूँ।
0: हाँ, आपका कॉल जरूर आता है। अच्छा चलिए उर्फी जी, आपने ये बताइए, हेलो फ्रेंड्स में कॉल किया है, क्या सुनना पसंद करेंगी आप?
1: गाना मैं सुनना चाहूंगी, मूवी का नाम तो मुझे नहीं मालूम। आहिस्ता आहिस्ता।
0: ठीक है उर्फी, आपकी पसंद से हम सुनवाएंगे आपको ये प्यारा सा सॉन्ग। आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत है। आपकी बात प्रज्ञा पाठक के साथ हो रही है। क्या शुभ नाम है और कहाँ से बोल रही है?
1: जी, मैं रिफा खान बात कर रही हूँ।
0: रिहा खान, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए।
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये बताइए, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं घर में, जैसे मैंने पढ़ाई पूरी कर ली, तो मैं इसमें घर में हूँ और एडमिशन करवाने वाली हूँ।
0: अच्छा, तो आपने पढ़ाई में क्या कर रखा है?
1: जी, मैंने तो अभी इंटर कर रखा है।
0: अच्छा, तो आप आगे पढ़ना चाहती हैं? और
1: जी, जरूर जरूर।
0: आपकी कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि है? आप क्या बनना चाहती हैं आगे चल के?
1: जी, मैं तो बनना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं।
0: अच्छा, वैसे हम आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डिंग्स लेकर आते हैं जिसमें हम नीट के बारे में या ऐसे जितने भी पेपर्स हैं उनके बारे में हम आप लोगों को बताएं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो ये, और ये जान पाएं कि कैसे फॉर्म आते हैं, कैसे तैयारी हो सकती है और क्या क्या उससे बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो आप हमारी रिकॉर्डिंग सुनती हैं?
1: जी, सुनती हूँ मैं। बहुत अच्छी आपकी रिकॉर्डिंग होती है।
0: अच्छा, तो रेहा, आज आपने हमें कॉल किया है। देखिए, आप ये बताइए, अब पढ़ाई लिखाई की तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। आप ये बताइए, क्या सुनना पसंद करेंगी आप?
1: जी, मैं सुनना चाहूंगी, जिद मूवी का है, तलब है तू, तू है नशा।
0: ठीक है, हम आपकी पसंद से आपको सुनवाएंगे ये प्यारा सा सॉन्ग। सुनते रहिएगा साथियों युवानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू।

चलते हैं दोस्तों आज के सवाल की तरफ, जहां हमने आपसे पूछा था कि समलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, जिसका सही उत्तर है उड़ीसा के मयूरभंज में। सही उत्तर दिया है हमें निम्बानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह ने, सादुलशहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ ने, कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, धर्मेंद्र कश्यप, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र झिम्पा, राजवीर सिंह यादव, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, प्रवीण चौहान, अनोखीलाल मौर्य, लाल मोहम्मद अंसारी, इन सभी ने आज के सवाल का सही उत्तर दिया है। दोस्तों अब वक्त हो चुका है आपसे आज के कार्यक्रम से विदा लेने का। अपने दोस्त प्रज्ञा पाठक को दीजिए आज के कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। समय मिला लीजिए, शाम के 6:30 और 15 सेकंड हुए हैं। इसी समय के साथ ग्राम जगत कार्यक्रम को लेकर तेजपाल भैया हमारे बीच आ चुके हैं, तो चलिए अब इनके साथ सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

कार्यक्रम ग्राम जगत में सभी ग्रामीण भैया बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सब भैया बहनों को आपके भैया तेजपाल की राम राम। और सुनाओ भैया बहनों, कैसे हाल चाल हैं? हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सब भैया बहन स्वस्थ होंगे। बात करें स्वास्थ्य की, तो भैया बहनों बरसात को मौसम चल रहा है, जा मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखने होएगा।

0: साथ ही अपने पशुओं के स्वास्थ्य को भी विशेष ध्यान रखना होगा। और जब मौसम में मच्छर मक्खी बहुत हो जाते हैं, इनसे बचाव रखना होगा। परिवार में जो भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी विशेष ध्यान रखना होगा। जब हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, तभी हम अपनों व अपने बच्चों को अच्छे से ध्यान रख सकेंगे और अपनों विकास कर सकेंगे। इस समय धान की रोपाई को काम चल रहा है। आज दिन है रविवार को, और आज के दिन हमारे भैया बहनों को इंतजार रहता है। उनके द्वारा भेजे गए पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों के साथ मनोरंजन करने को आपने फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकमंजरी मैं लेकर हाजिर हो चुका हूँ, आपका भैया तेजपाल। मनोरंजन तो हम सब करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम कर लेते हैं एक चर्चा जिसको विषय है आज की बचत कल की सुरक्षा। वर्तमान में की गई थोड़ी सी समझदारी भरी बचत और निवेश भविष्य में आपके काम आ सकती है। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, थोड़ी थोड़ी बचत भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्तमान की थोड़ी सी बचत भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा है। अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर उसे सही जगह निवेश करना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक आज़ादी और मानसिक शांति मिल सके आपको। ये आपको आपातकालीन स्थितियों में बहुत काम आती है। तो भैया बहनों, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम लोकमंजरी, और इस लोकमंजरी कार्यक्रम में फरमाइशी लोकगीतों को सुनने के लिए कुछ हमारे भैया बहन हैं, उन्होंने फरमाइश व्यक्त की है। चरडोगरी पिपरिया, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी साहू, माया साहू। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, ऊषा राय, अमित राय, हैप्पी राय। दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। ग्राम करेली भिंडी मोहल्ला बरेली से इशाक अहमद अंसारी, अफसार अहमद अंसारी, अंसार अहमद, दिलदार अहमद, मोहम्मद अर्स और मोहम्मद आरिश। तो भैया बहनों, इन सब की फरमाइश पे सुन लेते हैं ओम प्रकाश भैया की आवाज में ढोला।
1: पहुंची दरवाजे पे तो लालाइन तो बैठी द्वारे पे आज और लेके चिमटा बिरना मुंह सर और मुंह को फुलाए के बैठी है देखो राम। तो बोले लाला पहुंच गए कान के, ओ लाला इतने लली आई घर की और घर की लली का उतार ले हो उन्हें चुप्पा रही और लाला ये तेरो मरे तेरो गाड़ी जार बताओ बेटी आए मैं कौन सी बात घटी है आए का हम तुम्हें रोटी नहीं बनाए खवाऊती सुन तो ना लाला हम तुम्हें रोटी नहीं बनाए खवाऊती का तुम्हारी खटिया नहीं बिछौती आए तुम्हारी सेवा नहीं करती तुम्हारे पाए नहीं दबौती आए बढ़ौती बस तुम सठी आई है जब सऊठ को ले आए आए ऐसी बात है जब कहन लगी लालाइन तो लाला के गुस्सा गई बदन में छाए और हाल बता मैं वो मेरी

आओ मेरे प्यारे भाई और लाला और लालाइन मतैया क्या मचो लालाइन तेरी भजती फिर आए और लाला पीछो ना छोड़े कहा यार बकरी तो ठोर मार डरे हैं आए जा बताओ फिर हमें तो समझाओ तेरे समझ में आया हो हम कहा जल लौड़ी हमारी और तेरे समझ में आया हो।

सही मारे जा तो दारी जा रहे बताओ तुझे लौड़िया मेरी आए मोको मार मार के ढेर करे दारी जा रहा मैं सही कह रही हूँ मैं मान ना सकत कर भाई उन्हें अच्छा तू कैसे मनिया सो तो बात बताओ कैसे मनिया तो उन्हें मैं ऐसे मानूंगी कि मैं दरवाजे से लेकर भीतर वाली कुठरिया मेरे बता से डाट देंगी उन बता से पैसे जा लिख रहे और एक बता दो फूटी हो तो मैं जान लूंगी मेरी साउ से आए और लौड़िया ना आए और बता सो ना फूटो तो जान लूंगी कि मेरी लली है लाला।

0: जब नहीं फूटा है और पल्ली तरफ को जब उतर गई मंजा तो लाला इन दौरी उन लाला तुम्हारी कसम ले जो गलती भी है सो ये हमें माफ कर दे। अब जाता हमारी धर्म की बिटिया आई और लाला इन झपट गई पहुंची मंजा और मैं बलहरी का गोली उठाई लो। अब तो भूली ना समा में कहा देव तो मेरे बाकी धर्म को देव तो ऐसी बात जब कही लाला ने तो कोई सखिया 12 बरस की अब कोई 16 की बिजनार और कोई डुकरिया है 80 बरस की जिनके मुख में एक दांत है ना ऐसी ऐसी डुकरिया और जुआने सब आई है आवाज करके ढोलक बजन लागी तो खूब सरिया सोहर बनना हुआ हो खूब खुशी मनाई जात मेरे प्यारे भाई। और दर्शनपुर में पंडित जी बुलवाए गए इधर जो है डस्टाउन के लिए ऑर्डर मिलता है तो राजा
1: भैया बनो। अभी आप सुन रहे थे ओम प्रकाश भैया व उनके साथियों की आवाज़ में ढोला। अब अगले लोकगीत को सुनने से पहले एक महत्वपूर्ण वार्ता है वो सुनवाई देते अपने भैया बहन को जिसको विषय है प्राथमिक शिक्षा का बदलता स्वरूप। वार्ताकार हैं श्री विनोद कुमार वर्मा। तो अब भैया सुन लेते हैं जब महत्वपूर्ण वार्ता
2: का बदलता स्वरूप विषय पर अपने विचार साझा करने का अवसर मिला है जो केवल एक नीतिगत विचार ही नहीं है हमारे राष्ट्र के सुनहरे भविष्य का दर्पण है। आज का हमारा विषय है शिक्षा का बदलता स्वरूप। भारतीय संस्कृति में कहा गया है सा विद्या या विमुक्ताएं अर्थात विद्या वही है जो हमें बंधनों से मुक्त करे। महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि शिक्षा मनुष्य के भीतर अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है।

परंतु हम ईमानदारी से विचार करें तो दर्शकों से हमारी शिक्षा प्रणाली केवल अंकों की होड़ रटने की प्रवृत्ति और डिग्रियों के बोझ तले दबी हुई थी। आज हम इस एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे थे जो बच्चों को ये तो सिखाती थी कि क्या सोचना है, लेकिन ये सिखाना भूल गई कि कैसे सोचना है। आज भारत उसी पुरानी और रूढ़वादी व्यवस्था की केचली को उतार कर फेंक रहा है। आज हम शिक्षा के नए जीवित और वैज्ञानिक रूप का उदय देख रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक नए युग का सूत्रपात है। यह शिक्षा के एक नए रूप की आधारशिला है। यह कोई सामान्य सुधार नहीं, बल्कि भारतीय शिक्षा के इतिहास का सबसे बड़ा पुनर्जागरण है। इससे दर्शकों पुरानी 10+2 की शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर एक अत्यंत वैज्ञानिक और व्यवहारिक ढांचा हमारे सामने रखा गया है। 5+3+3+4 फाउंडेशन स्टेज प्रथम अवस्था है इसकी। 5 वर्ष इससे खेलकूद और गतिविधि के माध्यम से बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चा स्कूल में जाने से डरे नहीं, बल्कि स्कूल को अपना दूसरा घर समझे। प्रीपरेटरी और मिडिल स्टेज अगले 3+3 यानी 6 वर्ष, यहाँ से बच्चों को कोडिंग, व्यावसायिक कौशल और व्यवहारिक ज्ञान से परिचित कराया जा रहा है। नए भारत में अब मिट्टी के बर्तन बनाने वालों की कला या बढ़ई के हुनर को भी उतना ही सम्मान दिया जा रहा है जितना कंप्यूटर के एल्गोरिथम को। सेकेंडरी स्टेज एक इस चरण से विज्ञान, वाणिज्य और कला के बीच की उस कठोर दीवार को ढा दिया है जिससे ना जाने कितने छात्रों की प्रतिभा को दबा दिया था। अब भौतिक विज्ञान पढ़ने वाला छात्र यदि चाहे तो पूरी शिद्दत के साथ इतिहास या भारतीय शास्त्रीय संगीत की भी पढ़ाई कर सकता है। ये हमारी नई शिक्षा नीति 2020 की देन है और ये सबसे बड़ा बदलाव है। ये नीति इस बात की गारंटी देती है कि आपकी रुचि, आपकी प्रतिभा अब सिर्फ आपका शौक बनकर नहीं रहेगी, बल्कि वो आपकी मुख्य पढ़ाई का हिस्सा बनेगी। इस बात में एक चीज और मैं जोड़ना चाहूँगा, जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF शिक्षा की आत्मा। यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक सुंदर सपना है, तो राष्ट्रीय पाठचर्या उस सपने को धरातल पर सच करने का माध्यम है। NCF मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो हमारा कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ने अपनी शिक्षा भारतीय ज्ञान परंपरा के पंचकोश विकास की अवधारणा को पुनर्जीवित किया है। पंचकोशीय व्यवस्था जैसे अनन्यमय कोश, शारीरिक विकास, प्राणमय कोश, प्राणमिक और ऊर्जात्मक विकास, मनोनयन कोश, मानसिक और भावात्मक विकास, विज्ञानमय कोश, बौद्धिक और तार्किक विकास, आनंदमय कोश, आध्यात्मिक और अत्यधिक आनंदित विकास, ये दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि हमारे विद्यालय केवल अंक तालिका या रिपोर्ट कार्ड बांटने वाले संस्था ना बने, बल्कि वे एक संपूर्ण संवेदनशील और सुदृढ़ इंसान का निर्माण करें। इसके साथ ही NCF ने मातृभाषा में शिक्षा पर विशेष बल दिया है। मनोविज्ञान और विज्ञान दोनों मानते हैं कि बच्चा अपनी मातृभाषा में जितनी सहजता से मौलिक चिंतन कर सकता है, किसी विदेशी भाषा में नहीं कर सकता। अपनी भाषा में सीख कर ही हमारा विद्यार्थी हीन भावना से मुक्त होगा और उसमें अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का भाव होगा। और मूल्यांकन में एक बदलाव किया गया, जो हमारी पुरानी प्रणाली थी, यानी कि मूल्यांकन में बदलाव, रटने से समझ की ओर। शिक्षा के उस नए रूप में सबसे बड़ा बदलाव मूल्यांकन की प्रक्रिया में आया है। अब मूल्यांकन इस बात का होगा कि छात्र में क्या सीखा, उसकी तार्किक क्षमता कितनी बढ़ी और समाज की समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है। आज हम AI, डाटा साइंस और कोडिंग जैसे आधुनिक विषयों को अपनी जड़ों यानी वेद, उपनिषद और गणितीय धरोहर के साथ जोड़ रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा समन्वय है। अतः शिक्षा के बदलते स्वरूप को सफल बनाने का दायित्व हम सभी का है, शिक्षकों का, अभिभावकों का, नीति निर्माताओं और स्वयं विद्यार्थियों का। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करे। अंत में मैं इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। जड़ों को सींच कर हमने
नए आकाश छूने हैं, जड़ों को सींच कर हमें नए आकाश छूने हैं, पुरानी बेड़ियों को तोड़ नए विश्वास बुनने हैं। यही है रूप शिक्षा का, यही नवयुग का नारा है, बदलता ये

0: हुआ भारत अब विश्व का सहारा है। जय हिंद जय भारत।
1: भैया बहनों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, जिस वार्ता को विषय हो प्राथमिक शिक्षा का बदलता स्वरूप। वार्ताकार थे विनोद कुमार वर्मा। भैया बहनों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक मंजरी, और अगले गीत को सुनने की फरमाइश हमें मिली है जिला बदायूं ग्राम दूनीनगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, गुड्डू, विशाल, संगम, वैभव, आदेश, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरिता, अंतिमा व समस्त कठेरिया परिवार ने। मारहरा दरवाज़ा एटा से लिख रहे हैं नबी हसन अब्बासी, अनम यसफ, नावेद हसन अब्बासी, रसीद बारसी, शहनाज अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी। गांव कुमारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम। ग्राम सिरौंधी अंगतपुर टावर के पास मीरगंज बरेली से लिख रहे हैं जाहिद सैफी, समीर सैफी, सोहेल साहेल और मुनिंद्र शर्मा पंडित जी। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही, स्वाति। तो भैया बहनों, इन सब की फरमाइश पर सुन लेते हैं जो प्यारो सो लोकगीत झूला कैसे झूलूं, सीमा संजय और मंजरी शर्मा की आवाज़ में।

भैया बहनों, अभी आप सुन रहे थे जो प्यार उसे लोकगीत। उम्मीद करते हैं कि हमारे सब भैया बहनों को पसंद आओ होगा। और अगले लोकगीत को सुनने की फरमाइश हमें मिली है ग्राम करौरा तहसील मीरगंज जिला बरेली से। लिख रहे हैं फूल सिंह, जसवंत सिंह, सौरभ, गौरव, दीपक, सरदार सिंह, नन्हे, महावीर, धर्मदास, सोनू, संजीव, पिंटू, फौजी व समस्त ग्रामवासी। मीरापुर फतेहगंज पश्चिमी बरेली से लिख रहे हैं सूरज शर्मा, महावीर श्रीवास्तव, पप्पू श्रीवास्तव, अतुल, शनि, आदित्य, सुमित, लक्ष्मी प्रधान जी, थान सिंह व समस्त ग्रामवासी। अलखनाथ मंदिर के सामने गंगवार बैग लाइन बरेली से बेचेलाल गंगवार, प्रशांत देव, ज्ञानेंद्र देव, गुड्डी देवी, इला देवी, संजय अग्रवाल, राज बर्फा देवी, सुनील यादव, अश्वनी कुमार, दयाराम मौर्य, मास्टर विनोद दीक्षित, बाबू भाई, रमेश चंद्र सैनी व समस्त मित्रगणों ने। जिला पीतल नगरी ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह। तो भैया बहनों, इन सब की फरमा

भैया बहनों, अभी आप सुन रहे थे माधुरी शर्मा की आवाज़ में जो प्यारो से लोकगीत। उम्मीद करते हैं कि हमारे सब भैया बहन उनको पसंद आओ होएगो, और अब ज़्यादा समय ना बचो है कि और अपने भैया बहनों से बातचीत करें। तो अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने भैया तेजपाल को दियो अनुमति। भैया बहनों, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। शाम के 7 बजे हैं और इसी के साथ समय हो चला है कानूनी सलाह का। आज का विषय है बैनामा कराते समय ध्यान रखने योग्य बातें। इस विषय पर श्री यशेंद्र सिंह से बातचीत की है धारा सिंह ने।
1: कानून सहायता कार्यक्रम में आज आपका भाई धारा सिंह कुछ बारीकियां बताने के लिए उपस्थित है। आज इसी कड़ी में बातचीत का विषय है दस्तावेज लेखन और उसकी किन किन बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिए। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री यशेंद्र सिंह एडवोकेट। आप सीनियर अधिवक्ता हैं और विधि व्यवसाय कर रहे हैं। यशेंद्र जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: तो सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि ये जो बैनामा या दस्तावेज लेखन, ये क्या होता है?
2: दस्तावेज लेखन तो एक सामान्य सी बात है। कोई भी कागज जो आपने तैयार किया है, उसे टाइप कराया है या हाथ से लिखा है, तो उसे आप दस्तावेज लेखन कहेंगे। और कोई भी दस्तावेज लिखने के या टाइप कराने के बाद जब विधिवत रूप से आप उसका पंजीकरण कराते हैं
1: जी,
2: तो पंजीकरण की व्यवस्था

0: बदल जाती है जी। पंजीकरण के लिए आपको सरकार द्वारा नियत स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन शुल्क पे करना पड़ता है, और उसमें जो उसकी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं, तब आपका दस्तावेज सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होता है।
1: इसका कानूनी पहलू क्या है?
0: कानूनी पहलू इसका यह है कि आपके बहुत सारे दस्तावेज पंजीकृत किए जाते हैं, जैसे बैनामा है, वसीयत है, पावर अटॉर्नी है, गिफ्ट डीड है और किरायनामा है। ये दस्तावेज पंजीकरण का जो कार्य है वो मूल रूप से इसलिए किया जाता है ताकि दोनों पक्षों के बीच में जो भी नियम शर्तें तय हुई हैं या जो भी संविदा हुई है या जो भी विक्रय हुआ है उसको लिपिबद्ध किया जाए
1: जी।
0: और लिपिबद्ध करने के साथ साथ उसमें जो उसकी स्टाम्प ड्यूटी है और या जो उसका पंजीकरण शुल्क है वो अदा करके विधिवत उस दस्तावेज का पंजीकरण करा लिया जाए, और ताकि भविष्य में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो दस्तावेज मान्य होता है और वो वैधानिक रूप से सभी जगह उसको कंसीडर किया जाता है
1: जी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि चाहे वो खेती की जमीन हो या फिर घरेलू संपत्ति हो, उसका अगर कोई लेखन कराया जाता है या उसका कोई बैनामा कराया जाता है, तो महत्वपूर्ण कौन कौन सी बातें हैं जो खरीदार को और जो बेचने वाला है उसको रखनी चाहिए?
0: जी, बैनामा जो है वो कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी है वो संपत्ति या तो उसे पैतृक रूप से प्राप्त हुई है या वो संपत्ति उसने क्रय की है या किसी ने उसको दान दी है, तो ऐसी संपत्ति को यदि कोई व्यक्ति विक्रय करना चाहता है तो विक्रय करने के लिए उसकी जो प्रक्रिया है उसे बैनामा कहते हैं। बैनामे के लिए जो व्यक्ति विक्रय कर रहा है उसके पास इस बात के पर्याप्त साक्ष्य होने आवश्यक हैं कि वो संपत्ति उसको किस प्रकार प्राप्त हुई है, उस संपत्ति का मालिकाना हक उसको किस प्रकार प्राप्त हुआ है। जैसे कृषि योग्य भूमि है तो कृषि योग्य भूमि का जो सबसे मुख्य आधार लिया जाता है वो खतौनी से लिया जाता है। खतौनी में यदि भूमि आपके पैतृक रूप से आ रही है तो उसमें सारे इंद्राज चढ़ते रहते हैं, बारिशान चढ़ते रहते हैं, और उसमें खतौनी में यदि आपका संबंधित गाटा नंबर पर संबंधित उसमें रकबा दिया होता है, गांव का नाम, तहसील, पूरी डिटेल तैयार होती है उसमें, तो उसमें यदि आपका नाम दर्ज है तो उसके आधार पर आपको उसका स्वामी माना जाता है, और जो आपका हिस्सा है उस संपत्ति में उस हिस्से में से कितना हिस्सा आप बेच रहे हैं
1: जी,
0: दोनों पक्षों के बीच में कितने हिस्से का बैनामा तय हुआ है, उतने हिस्से के विक्रय का एक बैनामा यानी कि विक्रय पत्र तैयार किया जाता है। और विक्रय पत्र तैयार करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क ये दोनों अदा करने के लिए जो है समय समय पर शासनादेश आते रहते हैं, और इसके लिए बाकायदा हर तहसील में उपनिबंधक कार्यालय की व्यवस्था की गई है जहां ये दस्तावेज पंजीकृत होते हैं। इसके अलावा एक सूची होती है
1: जी,
0: मूल्यांकन सूची कह लीजिए उसे, या सर्किल रेट जिसे कहते हैं। सर्किल रेट का अर्थ ये होता है कि सरकार की नजर में किस गांव की कौन सी भूमि किस मूल्य की है, यानी कि जब वो उस भूमि का विक्रय होगा, सर्किल रेट का मतलब ये नहीं है कि वो भूमि उसी रेट पे बिकनी है
1: जी,
0: बिक्री का रेट अलग हो सकता है, सर्किल रेट वो रेट होता है जिस पर जब उस संपत्ति का कोई दस्तावेज निबंधित किया जाएगा तो उस दस्तावेज पर जो स्टाम्प ड्यूटी देय होती है
1: जी।
0: मान लीजिए किसी का खेती की जमीन है, एक एकड़ जमीन है, तो एक एकड़ है या एक हेक्टर है, जो भी एरिया है उसके हिसाब से सर्किल रेट के हिसाब से उसके जो सरकारी वैल्यू निकल कर आएगी उस सरकारी वैल्यू की गणना की जाती है
1: जी,
0: सूची के अनुसार, और उसके बाद सर्किल रेट या जो बाजारी मूल्य है वो जो अधिक होता है
1: उस पर
0: स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जाती है
1: जी।
0: जैसे अगर आपने कोई संपत्ति अगर 10 लाख में खरीदी है जिसमें आपकी बाजारी मूल्य है 10 लाख है, और उस पे अगर सरकारी सर्किल रेट के हिसाब से 12 लाख रुपए की कीमत आ रही है तो आपको स्टाम्प ड्यूटी 12 लाख पर पे करना होगी। तो उस ड्यूटी को पे करने के लिए सरकार ने बाकायदा स्टाम्प की व्यवस्था की गई है। पहले स्टाम्प छपे हुए अवस्था में आते थे, अब जो है ई स्टाम्प उपलब्ध हैं, और ताकि जनता को और आसानी हो जाए, और वो स्टाम्प ड्यूटी पे करके आप उसका स्टाम्प परचेज करते हैं। स्टाम्प परचेज करने के बाद फिर उस पर जो भी आपका दस्तावेज है, बैनामा है, वसीयत है, या पावर अटॉर्नी है, गिफ्ट डीड है, वो उस पर तैयार की जाती है। फिर उसको जो है गवाहों के सबके हस्ताक्षर फोटो सब करा के और प्रस्तुत किया जाता है।
1: जी, आपने बताया।

0: के खतौनी से है वो स्वामित्व तय होता है। ये तो विक्रेता की बात होगी, लेकिन अगर क्रेता उसको खरीद रहा है तो क्रेता को कैसे करके सावधानी पूर्वक ये जानकारी करनी चाहिए कि मैं जो संपत्ति खरीद रहा हूं इसका वास्तविक स्वामी यही है, तो वो खतौनी से ही पता चलेगा।
1: हाँ, इसमें ऐसा है कि जो कृषि भूमि है उसका इंद्राज जो है स्वामित्व का खतौनी में होता है, और उसके अलावा जब आप कोई कृषि भूमि क्रय करें तो उसमें सबसे पहले ये देखें कि खतौनी में किसी बैंक का कोई लोन तो इंद्राज नहीं है।
0: जी।
1: यदि किसी बैंक का कोई लोन इंद्राज है तो पहले वो लोन अदा करें, पहले जो जो विक्रेता है उससे वो लोन अदा करवाएं, और लोन अदा कराने के बाद जो है, क्योंकि तभी वो जमीन जो है वो बंधक से मुक्त होगी और तभी आप उसको विधिवत रूप से क्रय कर सकते हैं।
0: जी, अच्छा, ये कृषि योग्य जो जमीन होती है जिसमें खेती बाड़ी की जाती है, ये तो जमीन हो गई कि हम खतौनी से इसका स्वामित्व तय कर सकते हैं, लेकिन जो भवन बने हुए होते हैं, मकान बने होते हैं, अगर उनका बैनामा हो रहा है या प्लॉट का बैनामा हो रहा है, उस संबंध में आपकी क्या सलाह है?
1: देखिए, अभी तो खतौनी का भी अभी आप थोड़ा सा आपको क्लियर कर दें।
0: जी,
1: खतौनी एक तो वो होती है जो हमारी बारिशान रूप में चली आती है। कभी कभी क्या होता है कि हमने जो विक्रेता है उसने कोई कृषि भूमि खरीदी है और खरीदने के बाद उसका जो है वो नामांतरण कराना होता है खतौनी में, तो जो बैनामा आप कराया है उस बैनामे के अलावा खतौनी में भी उसका इंद्राज होता है, वहां भी उसका नाम अंकित होना चाहिए। तो दो तीन चीजें जो विशेष रूप से ध्यान देने की हैं, वो एक तो ये है कि जब आप कोई भूमि क्रय करें तो उस भूमि का खतौनी के बारे में आप पूरा डिटेल निकाल लें कि लेटेस्ट खतौनी क्या कह रही है, कि ऐसा तो नहीं है वो भूमि पहले बिक चुकी हो, और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पहले उसका मुआयना करा के ये सुनिश्चित कर लें कि किसी के साथ इस भूमि का कोई विक्रय पत्र या कोई एग्रीमेंट तो पहले से किया हुआ नहीं है। जब ये सारी चीजें स्वामित्व को लेकर स्पष्ट हो जाएं तभी उस बैनामे की प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाएं।
0: जी, भूमि जो खेती योग्य है उसके बारे में तो आपने विस्तार से बता दिया, लेकिन अब अगर कोई भवन है और उसकी बिक्री हो रही है या कोई खरीदना चाहता है और वो रिहायशी एरिया में अगर है, तब उसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं?
1: हाँ, इसमें सबसे मेन चीज ये है कि जो शहरी क्षेत्र हैं उन शहरी क्षेत्रों में बाकायदा जितने भी मकान बने हुए हैं सबका डाटा नगर निगम, नगर पंचायत, जैसी स्थिति नगर निकाय जो भी हैं वहां पर मौजूद रहता है, और उसी से वो अपना गृह कर और जल कर वगैरह वसूल करते हैं गृह स्वामी से। इसके अलावा कुछ लोगों को वो संपत्ति पैतृक रूप से मिलती है, तो जैसे ही उनके परिवार में जिनके नाम संपत्ति हो उनकी किसी वजह से जब डेथ हो जाती है तो उनके नाम जो है वहां म्यूटेशन में आ जाते हैं
0: जी।
1: जो उनके वारिशान होते हैं, तो लेटेस्ट म्यूटेशन में जो वारिशान उनके अंकित हैं आप वो रसीद उनकी देख सकते हैं, वो डाटा उनका चेक कर सकते हैं, और यदि वो संपत्ति क्रय की गई है बैनामे के द्वारा तो उसका पूर्व का बैनामा आप देख सकते हैं। और बैनामा देखने के बाद आपको दोनों चीजें वहां क्लियर करनी है, एक तो नगर निगम या नगर पंचायत जैसी स्थिति हो वहां का टैक्स दे होना चाहिए, कोई टैक्स ड्यू ना हो। दूसरी चीज यह है कि जो बैनामे से अगर खरीद के आई है संपत्ति तो वहां आपको रजिस्ट्री ऑफिस में ये चेक कराना होगा कि जिस व्यक्ति के नाम ये बैनामा है उस व्यक्ति ने जब से बैनामा अपने नाम से कराया है तब से लेके अब तक किसी व्यक्ति को इसका एग्रीमेंट या बैनामा तो नहीं कर दिया है। दोनों स्थितियां स्पष्ट होने के बाद जो है तब आप उसका जो है विक्रय पत्र जो है वो तैयार करा सकते हैं।
0: जी, अच्छा, नगर निगम या नगर पंचायत में अगर कोई भूमि है तो उसमें भू स्वामी के नाम टैक्स होना चाहिए।
1: हाँ, टैक्स होना चाहिए, और वो टैक्स जो ड्यू हो वो टैक्स जमा होना चाहिए बैनामे से पहले ताकि वो लायबिलिटीज आपके ऊपर ना आए।
0: जी,
1: दूसरा ये है कि इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट चीज और है जो हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जो भी कोई भवन है उसमें आप बिजली कनेक्शन जरूर चेक करें।
0: जी,
1: होता क्या है कि बिजली कनेक्शन में कनेक्शन धारक होता है उसने पता लगा कि काफी समय से कोई बिल अदा नहीं किया है, बिजली कनेक्शन चल रहा है और आपने यदि वो क्रय कर लिया है तो वो लायबिलिटी आपके ऊपर बेवजह में आएगी, इसलिए आएगी कि अगर आप उसे कटवाएंगे तो कटवाने के बाद भी दूसरा कनेक्शन आपको तभी जारी होगा जब आप पहले वाले कनेक्शन का पैसा अदा हो जाएगा। एक ही परिसर में दूसरा कनेक्शन तब तक जारी नहीं हो सकता
0: जब तक उसकी एनओसी प्राप्त नहीं
1: एनओसी ना हो जाए। तो इसमें बेहतर यही है कि बिजली का भी ड्यू जो सरकारी दे है उसे आप पूरा करें। और ये तो शहरी क्षेत्र की स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि जो व्यवस्था अभी तक चल रही थी वो सब लोगों के मकान बने हुए थे, लोग अपने मकानों को अपने आप ही मार्क करके रखे हुए थे, जो मकान उसी की जमीन में बने थे वो पर्टिकुलर गाटा नंबर के साथ थे तो उनके बैनामे दर्ज हो रहे थे, जो गाटा नंबर के साथ नहीं थे तो उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, जो घरौनी तैयार करवाई है उन

0: कॉलोनियों से जो है वो आप स्वामित्व तय हो रहा है और आपका पूरा एरिया उसमें इंक्लूड है, तो आप जो है उस संपत्ति को आप बेच भी सकते हैं, आप उस पर लोन भी ले सकते हैं, वो एक बहुत बेहतर स्टेप लिया है।
1: घरौनी में जो है वो पूरी तरीके से
0: हाँ,
1: उसके
0: डिटेल
1: मकान
0: उसमें
1: की
0: सारी
1: चौहद्दी वगैरह।
0: लंबाई चौड़ाई और आसपास की चौहद्दियाँ और टोटल एरिया कितना है या कैसा बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये उसमें जो है सब इंद्राज रहता है।
1: जी, एक महत्वपूर्ण बात ये जानना चाहूंगा कि अगर खरीदार ने बैनामा करा लिया, वो बैनामा कराने के बाद उसको अपने नाम दर्ज कराने के लिए क्या करना पड़ेगा?
0: देखिए, दो चीजें हैं। जब आप कोई बैनामा पंजीकृत करा लेते हैं, तो बैनामा पंजीकरण के बाद जब बैनामा आपको मिल जाता है, तो उस बैनामे के अगर वो कृषि भूमि है, तो आपको उसका नामांतरण कराना है तहसील में, राजस्व अभिलेखों में। उसकी प्रक्रिया आपको तहसील में प्रारंभ करनी है, और यदि वो किसी नगर निगम या नगर निकाय यहाँ का कोई रिहायशी जगह है, तो वहां उसका इंदिराज आपको जो है म्यूटेशन कराना है संबंधित निकाय में।
1: जी
0: हाँ, ताकि आगे की जो टैक्स की लाइबिलिटीज हों वो आपको पे करनी हो और आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट इस बात का आ जाए।
1: जी देखिए, खेती की जमीन का तो दाखिल खारिज तहसील में उन्होंने करा
0: जी
1: लेते हैं खरीदार लोग जो हैं, लेकिन जो कान आदि के लिए जैसे प्लॉट खरीदते हैं तो प्लॉट का जो है वो दाखिल खारिज नहीं करा
0: प्लॉट नहीं
1: पाते हैं,
0: नहीं प्लॉट
1: अक्सर नहीं
0: देखिए नहीं
1: कराते
0: नहीं कराना चाहिए। उसका रीजन ये है कि किसी व्यक्ति के पास खतौनी में 2 बीघे जमीन है, अब उसने उस जमीन में से बेचना शुरू किया, तो आप अगर वहां खतौनी में अपने बैनामों की दाखिल खारिज नहीं कराएंगे, तो वो प्रॉपर्टी उसी के नाम शो होगी। जब उसके नाम शो होगी, तो वो अनावश्यक रूप से लोगों को फर्जी बैनामे भी कर देगा, फिर आपके लिए संकट खड़ा होगा। इसलिए जो भी लोग अपना बैनामा कराएं, वो खतौनी में अपना इंदिराज अवश्य करा लें, ताकि वो एरिया उसके नाम से माइनस हो जाए, और जब पूरा एरिया उसमें से बिक चुका होगा, तो भविष्य में किसी को फर्जी बैनामा कर ही नहीं सकता है।
1: जी,
0: तो ये बहुत बेहद जरूरी है।
1: धोखाधड़ी और फर्जी बैनामे से संबंधित आपने बात की, तो इस धोखाधड़ी से किस प्रकार से बचा जा सकता है?
0: इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप स्वामित्व का दस्तावेज अवश्य देखें कि ये संपत्ति किस प्रकार से विक्रय करने वाले व्यक्ति के नाम आ रही है। इसके अलावा आप ये अवश्य चेक करें कि इस संपत्ति का पूर्व में कोई एग्रीमेंट या बैनामा तो नहीं किया गया है। इसके अलावा ये संपत्ति जो आपके दस्तावेज में दिखाई दे रही है, इसकी व्यवहारिक स्थिति क्या है। तमाम आपको प्रैक्टिकल चीज बताते हैं, तमाम लोगों के पास ऐसे बैनामे हैं जो बैनामे दस्तावेज में तो उपलब्ध हैं, लेकिन जो व्यवहारिक रूप से भौतिक रूप से वहां पर वो प्लाट और या वो मकान उपलब्ध नहीं है। तो दोनों चीजों को आपको टैली करना है,
1: जी
0: प्रॉपरली उसकी चौहद्दी आपको देखनी है, और ये कंफर्म करना है कि जो संपत्ति आप क्रय कर रहे हैं, क्योंकि बैनामा पंजीकरण होने के बाद आप उसमें जो है अगर कोई करेक्शन है तो करेक्शन डीड करा सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन बैनामा पंजीकरण से पूर्व आप प्रत्येक चीज को बहुत बारीकी से जांच लें, उसके बाद ही दस्तावेज तैयार कराएं, क्योंकि एक बार स्टाम्प शुल्क जब स्टाम्प आप खरीद लेते हैं और उस पर आपका जो है मैटर टाइप हो जाता है, फिर उसको कैंसिल कराना, फिर उसकी पैसे वापस लेना लंबी प्रक्रिया है, तो आप इस चीजों से बचें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद यशेंद्र जी, आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए और आपने श्रोताओं के लिए दस्तावेज पंजीकरण के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। आपका कार्यक्रम में उपस्थित होकर श्रोताओं को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।

कानूनी सलाह में अभी आप सुन रहे थे श्री यशेंद्र सिंह को। आज का विषय था बैनामा कराते समय ध्यान रखने योग्य बातें। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना सुनिए। आप हैं खुशी पत्नी सचिन, आप सहसा थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली की निवासी हैं। इनकी आयु 22 वर्ष है, ऊंचाई 5 फीट, चेहरा लंबा व रंग गोरा है। इनके गले पर जले का निशान है। इन्होंने हरे रंग का सलवार सूट व दुपट्टा पहना हुआ है। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए प्रभारी निरीक्षक थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली से संपर्क करें। इसी क्रम में ये नाम है राजवीर शर्मा का। आप मॉडर्न विलेज भोजीपुरा बरेली के निवासी हैं। इनकी आयु 50 वर्ष, ऊंचाई लगभग 5 फीट, इकहरा जिस्म, अंडाकार चेहरा व रंग गोरा है। ये 1 जून 2026 से सुबह 6 बजे से

आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। अब से कुछ ही देर में होंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 7:20 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश भर में पौधरोपण महाअभियान के तहत लगाए गए 35 करोड़ से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 9 वर्षों में राज्य में भौतिक विकास के साथ वन क्षेत्र में भी हुआ विस्तार। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल करेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नितिन मिश्रा ने कहा, 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति पर होगा फैसला, न्यास के अधीन ही करेंगे काम। और बारिश के बाद आगरा में यमुना और बलिया में गंगा समेत कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन पूर्वांचल के कई स्थानों पर बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में पौधरोपण महाअभियान एक पेड़ माँ के नाम के तहत आज 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पवित्र त्रिवेणी के पौधों को रोपकर इस महाअभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति के असंतुलन को संतुलित करने के लिए जरूरी है कि पर्यावरण के प्रति हर नागरिक अपने दायित्व का निर्वहन करे। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

0: उठाए हैं और भौतिक विकास के साथ साथ प्रदेश में वनाच्छादन को विस्तार देने में सफलता हासिल की है।
1: यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी वृद्धि हुई है। नए नए एक्सप्रेसवे, हाईवे, सड़कों का एक लंबा जाल बिछा है। नए नए उद्योग आए हैं। शहरीकरण में भी नई नई कॉलोनियां बनी हैं, बसी हैं। सबसे ज्यादा भौतिक विकास की गति को तेज करने में योगदान देने वाले राज्य के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन सबसे ज्यादा भौतिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से बड़े राज्यों में यूपी ने अपने वनाच्छादन को भी विस्तार देने में सफलता प्राप्त की है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकास वाटिका की स्थापना, वानिकी आधारित कैलेंडर का विमोचन और मौलश्री का पौधा लगाकर हरित उत्तर प्रदेश के संकल्प को आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को पौधे और चेक भी प्रदान किए। इस अवसर पर वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद थे। प्रदेश भर में चलाए गए वृक्षारोपण महाभियान के क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन परिसर में सफेद चंदन का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सभी को प्रकृति के संरक्षण और स्वस्थ जीवन पद्धति को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं प्रदेश भर में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने अभियान में हिस्सा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पौधरोपण महाअभियान के तहत उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बाराबंकी में कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण और माँ के सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण जन अभियान है। आगरा के सिंगेंद्रा में स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पौधारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की। बागपत में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी और केपी मलिक ने वृक्षारोपण किया। कानपुर नगर में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, इटावा में राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने पौधारोपण किया। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। 14 जुलाई से वाहन इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ने लगेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: 63 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे लखनऊ और कानपुर के बीच की यात्रा के समय को मौजूदा 3 घंटे से घटाकर केवल 45 मिनट कर देगा। इस एक्सप्रेसवे पर दुपहिया वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। यह भारत का पहला बैरियर मुक्त एक्सप्रेसवे भी बनेगा, जिसमें टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे और फास्टैग रीडर लगाए गए हैं, ताकि वाहनों को रोके बिना टोल टैक्स काटा जा सके। हादसे की स्थिति में AI सक्षम कैमरे तुरंत NHAI नियंत्रण कक्ष को सूचित कर देंगे। इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ कानपुर उन्नाव लालगंज के साथ साथ गंगा एक्सप्रेस से आउटर रिंग रोड से भी कनेक्ट किया गया है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्रा ने आज अयोध्या में बताया कि रामकथा संग्रहालय की सभी गैलरियों की स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। संग्रहालय में भगवान श्री राम के वनगमन से जुड़ी यात्रा को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संग्रहालय के निर्माण पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। श्री मिश्र ने बताया कि 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी, जिसमें CEO की नियुक्ति, समितियों और उप समितियों के भविष्य सहित कई प्रशासनिक विषयों पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि CEO ट्रस्ट के अधीन ही काम करेंगे।
4: मुख्य प्रबंधक अधिकारी होंगे तो वह ट्रस्ट के अधीन प्रबंधन का कार्य देखेंगे, और यह तो ट्रस्ट पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार का डेलीगेशन CEO को करते हैं, और जैसा डेलीगेशन करेंगे वैसे ही फिर CEO जो है वो अपना स्टाफ वहां पर व्यवस्था की करेंगे, लेकिन सब कुछ ट्रस्ट के अधीन है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी।
5: EPFO की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से

0: नियमित करा सकते हैं। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज जालौन जिले में आधुनिक सुविधाओं से युक्त तरणताल और विकसित खेल परिसर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश में कल और 14 जुलाई को दो दिन सभी जिलों में विश्व कौशल दिवस के अवसर पर वृहद रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। इन मेलों में जीरो पॉवर्टी अभियान में चिन्हित गरीब परिवारों के युवाओं और दिव्यांगों को वरीयता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि इन दो दिवसीय रोजगार मेलों में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाए। QR कोड के जरिए युवाओं का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, फिर रुचि और योग्यता के आधार पर विभिन्न कंपनियों में उन्हें रोजगार मिलेगा। इस सिलसिले में सभी जानकारियां युवाओं को ITI में दी जाएंगी। 14 जुलाई को प्रयागराज जिले के नैनी स्थित माँ गायत्री महाविद्यालय में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3000 रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में कल से वर्षा का क्रम जारी है। मौसम केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि राज्य के तराई और पूर्वांचल के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।
2: उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि मानसून का तराई बेल्ट में शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं जैसा कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, देवरिया में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी जगह की बात करें तो स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे बादलों की आवाजाही रहेगी तथा कुछ जगहों पे छिटपुट वर्षा की संभावना है। तो कुल मिलाकर यह सिलसिला आने वाले अगले 2 से 3 दिनों तक रहेगा। और राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां पर थोड़ा बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी हो सकती है।
1: उधर लगातार हो रही वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बलिया में गंगा, आगरा और इटावा में यमुना, बिजनौर में रामगंगा, झांसी में बेतवा और सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में पौधरोपण महाभियान के तहत लगाए गए 35 करोड़ से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 9 वर्षों में राज्य में भौतिक विकास के साथ वन क्षेत्र में भी हुआ विस्तार। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल करेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का लोकार्पण। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्रा ने कहा, 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति पर होगा फैसला, न्यास के अधीन ही करेंगे काम। और बारिश के बाद आगरा में यमुना और बलिया में गंगा समेत कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन पूर्वांचल के कई स्थानों पर बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सुगंध, क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
5: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 102.4 FM पर। समय मिला ये 7:31 हुए हैं और अब प्रस्तुत है जनमंच।
7: श्रोताओं नमस्कार।
8: नमस्कार।
9: नमस्कार।
7: आज के जनमंच कार्यक्रम में मैं आपका भाई धारा सिंह जनमंच कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हो चुका हूँ। और आज जनमंच कार्यक्रम के तहत हमारे साथ उपस्थित हैं श्यामाचरण।

0: आप भीकमपुर बबूरा बरेली से हैं, साथ ही हैं वीरेंद्र कुमार नौगवा वीरान बरेली से और देवेंद्र कुमार भीकमपुर नवाबगंज बरेली से हैं। आप सभी महानुभावों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। समचरण जी, आपसे हमारी बातचीत का विषय है गांव का शहरीकरण और ग्रामवासी। तो वीरेंद्र कुमार, आप बताइएगा कि क्या उम्र आपकी हो चुकी है
1: मेरी उम्र हो चुकी है 25 साल।
0: और आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई?
1: पढ़ाई लिखाई ऐसे तीसरे चौथे तक हुई है,
0: अधिक नहीं पढ़ पाए?
1: नहीं पढ़ पाए हम।
0: तो आपसे ही पूरी बात जानते हैं, पहले के आपने कहा कि तीसरे चौथे तक पढ़े हैं, क्या कारण रहा कि आप?
1: मजबूरी थी हमारी शादी करने की बहनों की,
0: अच्छा,
1: इसलिए नहीं पढ़ पाए हम।
0: कुल मिलाकर के परिवार की जिम्मेदारी थी।
1: हाँ,
0: और
1: सबसे बड़े थे हम।
0: जी, तो फिर अब आजकल क्या कर रहे हैं?
1: खेती बाड़ी कर रहे हैं।
0: जी, देवेंद्र कुमार, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइएगा।
2: पढ़ाई लिखाई क्या, हम घर से अपने अकेले थे, पांच बहनें थी हमारी।
0: अच्छा,
2: वो पांचों की देखो शादी जो थी वो हमारे सिर थी,
0: अच्छा,
2: और पापा जो है वो बीमार हो रहे हैं,
0: तो इसलिए जो है आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हो पाई?
2: वो 6-7 तक।
0: जी, और अब पूरी तरह से
2: खेती बाड़ी कर रहे हैं।
0: सामित्रन जी, आप बताइएगा कि आपकी क्या उम्र हो चुकी है और आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है?
3: पढ़ाई लिखाई सर, पहले तो बाप ने स्कूल में दाखिला ही नहीं कराया।
0: अच्छा।
3: हाँ, जब एज निकल गई तब कराया।
0: वैसे तो किसी के पिताजी ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा ना पढ़े लिखे?
3: नहीं, जैसे बच्चे पर छोटेपन पर जाना नहीं चाहते थे।
0: हाँ,
3: बाद में जब सियाने हो गए थोड़े तो फिर दाखिला हुआ, इसमें जा नहीं पाए, फिर तो छोड़ दी पढ़ाई, छोड़ दी।
0: जी, तो कहीं ना कहीं आपका ये रोल रहा कि आपने शुरू में स्कूल जाना नहीं चाहा और फिर बाद में जब बड़े हो गए तो फिर उम्र निकल गई लेकिन पढ़ नहीं पाए
3: पढ़
0: सही
3: नहीं
0: से।
3: पाए।
0: तो अब आजकल क्या कर रहे हैं?
3: अब तो बस अपना ही काम देख रहे हैं, खेत में जुताई करना टाइम से और गन्ना जब टाइम से करना,
0: जी,
3: या धान के टाइम पे धान की कैसे करके पौध डालें।
0: परिवार में आपके कौन कौन लोग हैं?
3: परिवार में माँ भी है,
0: हम्म,
3: बहन भी है, बहन की शादी कर दी।
0: जी, और बच्चे कितने हैं?
3: बच्चे हमारे 4 हैं, एक की शादी कर दी लड़की की, दो लड़की एक दो लड़के।
0: जी, तो बच्चे आपके क्या कर रहे हैं आप?
3: बच्चे तो स्कूल जाते हैं,
0: कितने कितने बड़े हैं?
3: लगभग एक 7 साल 8 साल की लड़की है
0: हम्म,
3: और बकाया 5 साल का लड़का, एक 4 साल का है।
0: जी, तो आप नहीं पढ़ पाए
3: हम नहीं पढ़
0: लेकिन आप अपने बच्चों को क्या समझ करके, क्या सोच करके पढ़ा
3: हम
0: रहे हैं?
3: तो ऐसे रह गए जैसे बच्चों को कभी अगले बढ़ने का मौका दिया जाए।
0: हम्म, और वीरेंद्र कुमार, आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है?
1: एक लड़की है हमारे, अब उसको पढ़ाएंगे अच्छे स्कूल में।
0: अच्छा।
1: हम्म,
0: तो आज के समय में तो बेटियां ही सबसे ज्यादा आगे हैं कि पढ़ने लिखने के, वो अपना रोजगार भी कर रही हैं और राजनीति में भी आगे आ रही हैं। तो क्या सोच करके आपने अपनी बेटी को पढ़ाना है आगे?
1: आगे ये सोच के पढ़ाना है जैसे कोई जॉब वूब करवाना है।
0: हम्म, और देवेंद्र कुमार, आप अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहते हैं?
2: शिक्षा के बारे में क्या, 3 बच्चे हैं, तीनों का एडमिशन करा दिया, तीनों पढ़ रहे हैं।
0: जी,
2: जिससे कि हम सोच रहे हैं कि आगे बढ़ के वो किसी भविष्य में कुछ ना कुछ अपना नाम कमाए।
0: जी, चलिए साहब, बहुत अच्छी सोच है आपकी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आपकी जो खेती बाड़ी है उसमें आप कौन कौन सी फसलों का उत्पादन लेते हैं और किस तरीके से खेती बाड़ी करते हैं?
2: खेती बाड़ी जो है अपने इस टाइम धान लगा दिया है।
0: अच्छा।
2: गन्ना भी है, धान भी है।
0: हाँ।
2: उसकी जुताई खुदाई भी टाइम से गन्ने
0: अच्छा।
2: की कराओ और समय समय पर खाद पानी दो।
0: जी,
2: जिससे कि उसका उत्पादन बढ़े और कीटनाशक का स्प्रे करते रहो समय समय पर।
0: अच्छा उत्पादन मिले इसलिए सारे प्रयास आप करते
2: रहते हैं।
0: फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति भी जांचनी पड़ती है और उसके लिए मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी है। तो वीरेंद्र कुमार जी, इस बारे में बताइएगा कि खेतों से मिट्टी की जांच आपने कराई है कभी या नहीं?
2: अभी तो कराई नहीं
0: है। हाँ,
2: आगे चल के जो हमें उत्पादन मिले
0: हाँ।
2: उसके जरिए मिट्टी की समय समय पर जांच कराते रहे जिससे कि हमें आगे चल के उत्पादन बढ़िया मिले।
0: वीरेंद्र कुमार जी, आप बताइएगा कि क्या खेतों की मिट्टी की जांच करानी चाहिए या नहीं?
1: करानी चाहिए, इसलिए कोई जैसे ज्यादा बीमारी लग रही है, फसल क्यों सूख रही है, इसलिए करानी चाहिए, हमें नुकसान नहीं पहुंचे उस फसल से।
0: जी, मिट्टी जांच कराने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे खेतों में मिट्टी में किस तत्व की कमी है। जैसे कि मान लिया हमारा शरीर है, अगर डॉक्टर हमसे कहता है कि आपको कोई बीमारी हो रही है, जब तक उसकी जांच नहीं कराएंगे तब तक ये नहीं पता चलेगा कि किस बीमारी से हम ग्रसित हैं। उसी प्रकार से हमारे खेतों की मिट्टी की जाँच भी होनी बहुत जरूरी है। खेती बाड़ी में बहुत बदलाव आया है। श्यामचरण जी, आप बताइएगा कि क्या क्या बदलाव खेती बाड़ी में आपकी नज़र से आ रहा है?
3: बदलाव बहुत है, पहले से बहुत ज्यादा हो गया है।
0: कैसे?
3: पहले तो 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल का निकलता था, मगर अब जैसे अपने पास इंजन भी है, मोटर बत्ती भी है, हर चीज है, तो उसमें

0: पानी समय से मिलेगा तो फसल भी अच्छी आएगी।
1: जी, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए महत्वपूर्ण चीज होती है उसका बीज।
0: बीज बढ़िया डालोगे तभी आएगा फसल बढ़िया। और जैसे जुताई है, ज्यादा जितनी ज्यादा करोगे उतना ही बढ़िया है।
1: देवेंद्र जी, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन हमें तभी मिल सकता है जब हम समय से बीज, खाद, पानी और खेतों की जुताई करेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है?
2: इस बारे में किसी समय समय पर अपनी जुताई, देखभाल और कीटनाशकों की दवाई स्प्रे करते रहना और अच्छे बीजों के डालने से उत्पादन अच्छा मिलता है।
1: जी वीरेंद्र कुमार, एक महत्वपूर्ण बात हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन रासायनिक खादों के माध्यम से या जैविक खेती से या देसी खाद से।
3: देसी खाद से अच्छी होती है फसल।
1: हाँ, लेकिन देसी खाद आज के समय में कम होती जा रही है।
3: बीज ज्यादा लगाओगे, यूरिया है, एमपी है, ये ज्यादा लगाओगे जब ये बीमारी ज्यादा लगती है खेतों में।
1: जी, देसी खाद को किस तरीके से व्यवस्थित करते हैं?
3: पहले घर घर का गोबर डालते हैं घूरे में, उसे घूरा बोलते हैं। पहले वो खूब ज्यादा सही कबरा कर लेते हैं, वो गल जाता है। गल जाने के बाद में खेत में डालते हैं, उसे फैलाते हैं, गुड़ाई करते हैं अच्छे से, तो उसमें बीज डालते हैं,
1: तब जाकर कहीं अच्छा उत्पादन
3: उत्पादन मिलता है
1: जी।
3: उसमें।
1: वीरेंद्र कुमार, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अगर हम अपने खेतों से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो हम फसल चक्र अपनाएं। तो आप क्या अपने खेतों में कोई फसल चक्र अपनाते हैं? देवेंद्र कुमार जी, आप बताइएगा कि फसल चक्र से क्या समझते हैं?
2: फसल चक्र से लोग यही बढ़िया उत्पादन मिलता है और बढ़िया देखभाल करो।
1: इस समय आपके खेत में कौन कौन सी फसल खड़ी हुई है?
2: इस समय धान और गन्ना,
1: जी।
2: धान की गुड़ाई कर दी अभी।
1: अच्छा उत्पादन मिले इसके लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे?
2: इसके लिए समय समय पर खाद पानी का ध्यान रखेंगे और कीटनाशक दवाओं का ध्यान रखेंगे, निराई गुड़ाई का ध्यान रखेंगे, जिससे हमें ज्यादा उत्पादन अच्छा उत्पादन मिले।
1: वैसे कौन सी प्रजाति का धान आपने अपने खेत में लगाया है?
2: सिल्की लगाई थी। देसी।
1: अच्छा, तो इसकी पैदावार के बारे में पहले से पता था या किसी ने कहा तब ये लगाया है?
2: पहले पैदावार थी जो बहुत कम थी, बहुत कम थी, क्यों पहले जो ये जो कठिया हल से खेत जोतते थे तो वो उसी हिसाब से होते नहीं, तब अब लगाया, अब कई साल बाद लगाया, अब देखें कि कैसी हो रही कैसी नहीं हो रही है।
1: अच्छा श्यामचंद जी, आप अपने खेतों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए किन किन बातों का सही से ध्यान रखते हैं?
0: पहली बात तो जुताई की, जुताई जितनी बढ़िया कर लोगे उतना ही बढ़िया है। फिर बीज दुकान से लेकर आओ, उसे दुकान से गारंटी का बीज लेकर आओ, किसी से लाओ। बाकी बाद में पौध डालने भिगोना है, पौध।
1: अच्छा,
0: पौध भिगो के दबाना, फिर दबा के बाद में जब कल्ले निकल आए हल्के तभी कंधार करके कीचड़ बना के तभी डालना है।
1: जी, तो अभी कौन सी प्रजाति की नर्सरी आप अपने खेतों में लगाई है?
0: अभी हमने डाली है सिल्की भी डाली है और 47 धान डाला है।
1: कितने दिन की पौध की रोपाई कर देंगे?
0: वैसे तो कर देते हैं 20-25 दिन की।
1: हाँ।
0: जैसे खाद टाइम नहीं है, 2-4 दिन और बढ़ जाते हैं, वैसे 20 दिन के अंदर 25 दिन के अंदर गाड़ लें।
1: जी, और जब रोपाई करते हैं तो उस समय किसी प्रकार की कोई सावधानी रखी जाती है कि सही से पौध लग जाए और फिर उसमें खरपतवार वगैरह ना हो?
0: खरपतवार का ऐसा है, जैसे पानी समय से, जैसे लगाने के बाद पानी ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, जो पौधा अगर छोटा है डूब जाए तो मर जाए। और खाद जरपे ही डालना चाहिए, एनपी वगैरह, तभी अच्छी फसल मिलती है।
1: जी, तो इस तरीके से आप अच्छा उत्पादन धान की फसल से ले लेंगे। वीरेंद्र कुमार, खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन करना कितना महत्वपूर्ण समझते हैं आप?
3: बहुत अच्छा, जैसे भैंसे पालते हैं, उनका दूध निकालते हैं, उन्हें खिलाते हैं बढ़िया से, चोकर है, खल है, ये खिलाते हैं, उनकी देखभाल बढ़िया करते हैं,
1: तभी उनसे अच्छा दूध
3: मिलता है।
1: जी, दूध तो हमें मिलता ही मिलता है, इसके साथ साथ खेती बाड़ी में क्या मदद मिलती है?
3: खेती बाड़ी में उनके वो गोबर डालते हैं, वो एक बार इकट्ठा करते करके डालते हैं खेत में, गल जाता है जब भी, उसे फैलाते हैं, जुताई करते हैं बढ़िया से, उसे मिलाते हैं, मिला के उसे खेत जुताई करके उसे बीज डालते हैं, गेहूं बोते हैं, गेहूं अच्छी अच्छा होता है, दरका निकलता है अच्छा, 3 क्विंटल का कट जाता है।
1: जी, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि खेती बाड़ी में पशुपालन करना बहुत जरूरी है। जो पशु हैं वो हमारे लिए दूध तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ जो गोबर है वो हमारे लिए देसी खाद के रूप में काम में आ जाता है। देवेंद्र कुमार, खेती के साथ साथ अगर हम अपने खेतों में पौध रोपण करें, पेड़ लगाएं, तो उससे हमें क्या फायदा हो सकता है?
2: बहुत सारा फायदा हो सकता है।
1: जी, क्या क्या?
2: जैसे पेड़ लगाते हैं, लिप्टिड के पेड़ लगाते हैं, वो जैसे चारों गिरदे लगा दिए पेड़, तो आगे चल के हमें वो अच्छा

0: मुनाफा देते हैं, जिससे कि हमारी और अच्छी बचत होती है उससे।
1: और कौन कौन सा फायदा है पौध लगाने से?
0: पौध लगाने से जैसे लकड़ी हमारे काम में आती है, घरों के काम में आती है, चलाने के काम में आती है, दरवाजों के काम में आती है लकड़ी
1: जी।
0: बहुत सारे फायदे हैं उससे।
1: बहुत महत्वपूर्ण फायदा ये है कि अगर हमारे खेतों के चारों तरफ लिप्टिस का या पॉपुलर का मेड़ा अगर लगा हुआ है तो मिट्टी नहीं कटेगी हमारे खेतों से, और अगर कोई फसल खड़ी हुई है तो वो तेज हवा चलने के कारण गिरेगी नहीं। अब हम बातचीत आप लोगों से करते हैं कि हमारे गांव के जो विकास हुए हैं उसके संबंध में। श्यामाचरण जी, आप बताइएगा कि आपने अपना गांव कितने दिनों से देखा है?
2: हम तो 30 साल पहले से देख रहे हैं अपना गांव। तो जब से इतना विकास है कि जो कच्ची नाली थी, ये मिट्टी कटती थी इधर से उधर से, कच्चे घर थे, छप्पर पड़े हुए थे, अब तो सबके से एक साइड से एक घाई से कमरे भी आ गए, कमरे बन गए सरकारी, और बकाया जैसे नालियां पक्की हो गई, रास्ते पक्के हो गए, स्कूल हो गया, बत्ती का कलेक्शन भी गांव-गांव बेलाइट हो गई
1: जी। तो ये सारी सुविधाएं
2: मिल रही हैं।
1: अब 12-13 सालों के बीच में और अच्छा विकास हुआ है।
2: अच्छा विकास हुआ है।
1: देवेंद्र कुमार, आपको क्या लगता है कि आपका गाँव धीरे धीरे शहर की तरह हो रहा है?
0: जी, पहले से और जैसे कम से कम 10-15 साल पहले गांव के अंदर इतनी कीचड़ थी, रोडों पर निकलने की जगह नहीं थी
1: जी,
0: कहीं कहीं पे गड्ढे भी थे जिससे निकल नहीं सकते थे। आगे चल के देख रहा हूँ कि कुछ आगे और विकास हो रहा है, जिससे कि नाली रोड पक्के हो गए हैं, गांव में घरों का विकास हो गया है बढ़िया, और आवास मिलने के कारण और बढ़िया लगने लगा है। हल्के हल्के चल के वो हमारे कस्बे की तरह रूप में दिखने का प्रयास है
1: जी। कोई भी काम अगर होता था, जैसे कि हमें अपनी बैंक में खाता सही कराना है या बैंक में पैसे निकालने के लिए जाना है, गांव में ये सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो फिर हमें शहर की तरफ
0: बढ़ना पड़ता।
1: आज ये सुविधाएं किस प्रकार से आपके गांव में उपलब्ध हो रही हैं?
0: अभी तो हो नहीं रही हैं, आगे चल के हो भी जाएंगी। पास में हो गया, जो पहले भी जो जाते थे कम से कम 8-6 किलोमीटर दूर जाते थे, अब वो पास वाले गाँव में हो गया, कभी न कभी हमारे भी गाँव में आगे चल के सुविधा वो होगी
1: जी। वीरेंद्र कुमार, आप इस बारे में बताइएगा कि जो हमारे गांव हैं वो कस्बा और शहर की तरह होते जा रहे हैं,
3: इस तरीके से जो मेहनत ज्यादा कर रहे हैं उस तरीके से विकास भी हो रहा है, और अपने अच्छे अच्छे अच्छे काम करते हैं उसकी वजह से
1: जी। रोजगार की तलाश करने के लिए गांव छोड़कर शहर की तरफ जाना पड़ता था, आज बहुत से ऐसे युवा हैं जो शहर ना जा करके अपने गांव में ही रोजगार की तलाश कर रहे हैं। आपकी नज़र में क्या ऐसे कुछ युवा हैं कि जो गांव में ही अपना रोजगार कर रहे हैं?
3: हाँ, कर रहे हैं।
1: क्या रोजगार है आपके गांव में इस तरीके का?
3: शहर से बुलाते हैं, अपने गांव घूमते हैं, बेचने के लिए निकल जाते हैं गांव।
1: अच्छा,
3: उससे उनका रोजगार चलता है, अपने बेच बाच के लाते हैं, शाम को उन्हें पैसा मिलता है उससे।
1: कुल मिलाकर के 10-12 सालों में आपके गांव का विकास अच्छा हुआ है?
0: हाँ, वैसे भी अच्छा हुआ है
1: जी। आप सभी लोगों से, आप तीनों लोगों से मेरा एक सवाल ये है कि आप लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और सरकार ये चाहती है कि किसान भाइयों की आय दोगुनी हो, अपने खेतों से अच्छा उत्पादन आप लोग करें, तो इसके लिए आप लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं, आप बताइएगा श्यामाचरण जी।
2: जब ज्यादा फसल होगी बाजार ले जाएंगे, बेचेंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा, इतनी ज्यादा बढ़िया फसल होगी, ज्यादा ही गल्ला लेके जाएं।
1: देवेंद्र कुमार जी, आप बताइएगा।
0: जैसे कि फसलों से हमें ज्यादा मुनाफा लेना है तो कुछ फसलें ऐसी हैं जो एक एक फसल में दो दो फसलें हो सकती हैं, और कुछ फसलें ऐसी हैं जिससे कि उसमें साग सब्जी भी हो सकती है, उसे आगे चल के बेचें तो उससे ज्यादा मुनाफा हो सकता है
1: जी। वीरेंद्र कुमार जी, आपका क्या कहना है इस बारे में कि हम अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं?
3: ऐसे बढ़ा सकते हैं जैसे समय पर तीन चार फसलें भी ले सकते हैं।
1: वो कौन कौन सी?
3: साटा धान, एक ये धान लग रहा है अब, और एक गेहूं की फसल, हो गए तीन फसलें ये
1: जी। क्या चाहते हैं आप लोग कि किस तरीके से आपके गांव का विकास हो?
0: रोजगार, सेवा का उत्पादन किया जाए और जनसेवा केंद्र
1: बनाया जाए। आज के जनमंच कार्यक्रम में श्यामाचरण, वीरेंद्र कुमार और देवेंद्र कुमार आप लोग उपस्थित हुए और अपने गांव के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में, पशुपालन के बारे में आप सभी लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे जनमंच। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में मंगलवार दिनांक 14 जुलाई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है प्री टर्म अथवा समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियों और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे सोमवार दिनांक 13 जुलाई 2026 को सायं 4 बजे से। तो श्रोताओं, इस संबंध में इस विषय से जुड़ा यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो टेलीफोन नंबर 0581251700 पर कॉल करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लें। विषय है प्री टर्म अथवा समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, सोमवार दिनांक 13 जुलाई 2026 को सायं 4 बजे से। हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251700। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। और अब आगे के कार्यक्रमों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शामे अवध। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8 बजे है और प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तान्या अवस्थी की कहानी भोग और त्याग। सरला एक बहुत आध्यात्मिक स्त्री थी, केवल नाम से नहीं आचरण से भी एकदम सरल। सादा जीवन, सादा भोजन, वाणी में सौम्यता, व्यवहार में संयम, पूरे मोहल्ले में उसकी पहचान ऐसे ही होती थी। अरे वो अपनी भभूत वाली सरला भाभी, ओफो उसको मैसेज करो, आज फोन नहीं उठाएगी। जानती नहीं क्या आज एकादशी है, सरला का मौन व्रत होगा ना। कौन सरला कुमारी? अच्छा मैडम वैभव लक्ष्मी, उनको कौन नहीं पहचानता साहब। एक वही तो हर शुक्रवार पूजा की थाली लिए नंगे पांव मंदिर जाती हैं। धार्मिक ग्रंथ पढ़ पढ़ के, गुरु ज्ञानियों के प्रवचन सुन सुन के सरला ने इतना ज्ञान बटोर लिया था कि अब उस सेकंड हैंड ज्ञान के ज्वार भाटे दिन रात उसके अंदर जोर जोर से हिलोरे मारा करते थे। तिल भर मौका पाते ही वह पांडित्य की लहरें नहीं सुनामियां उसके रोम रोम से फूट पड़ती थीं। देखो बहन, सुख दुख तो आता जाता रहेगा, मानव का तो यही कर्तव्य है कि हर स्थिति में चित्त की तटस्थता बनाए रखे। मेरे लिए त्याग ही सब कुछ है, संचय करने से क्या मिलेगा, एक दिन तो सब खाली हाथ ही लौटेंगे ना, क्यों भाई साहब? अरे बाबूजी, ये सुखी रहो वाला आशीर्वाद ना दीजिए। सुख दुख तो जुड़वा भाई हैं, जहां जाते हैं एक साथ ही जाते हैं। मुझे तो अब परमानंद की खोज है। दीदी पुण्य आप ही कमाइए, ये पुण्य की ही पूंजी है जिसका बोझा ढोए पड़ी हूँ। पाप पुण्य ही तो आत्मा को जीवन चक्र में फंसाए रखते हैं। मुझे तो अब इस संसार के वर्तुल से मुक्ति चाहिए बस। सरला को ना अपने सौंदर्य का घमंड था, ना व्रत उपवासों के फल स्वरूप अपनी छरहरी बनी हुई देह का, ना अच्छी बहू होने का कोई खास शौक था, ना सर्वोत्तम पत्नी या माता घोषित होने की कोई आकांक्षा। उसको रात में संतोष की नींद दिलाने के लिए बस एक ही चीज काफी थी, उसका एक सच्ची साधिका होना। सत्य की खोज में भटकती परम विरह से शोकाकुल एक ऐसी आत्मा होना जो एक अतृप्त व्यथित मचलती नदी सी

उस शाश्वत शून्यता के सागर में विलीन हो जाने को आतुर है जहां से उसका उद्गम हुआ था। एक जोगन की साधना एक और सामाजिक दायित्व एक और। सबसे बड़ी ननद के सबसे छोटे देवर का विवाह पड़ा। लड़की वाले थे मालदार तो दावत होनी ही थी शानदार। फिर सरला क्यों सरल साधारण लगती? चमचमाती साड़ी हफ्तों पहले से इस्त्री करवा के तैयार रखी थी, ऊंची एड़ी वाली चप्पल जो उसके धार्मिक व्यक्तित्व से मेल ना खाने के कारण न जाने कब से संदूक में घुट घुट के जी रही थी, इस विशेष मौके पर निकाली गई थी। जेवर हल्के ही सही, एकदम नए डिजाइन वाले थे, जैसे फलानी हीरोइन ने फलानी पिक्चर में पहने थे। देखिए जी, अध्यात्म तो एक अत्यंत निजी विषय है। एक जोगन के वैराग्य को ये समाज थोड़े ही ना समझ पाता है। समाज में तो अपने कुल की प्रतिष्ठा के लिए बहू रानी को श्रृंगार करना ही पड़ता है। आखिर सासू माँ समधियाने में अपनी नाक कटवाएंगी क्या? कोई कहे ना कहे, सरला को पता था कि वो आज बहुत सुंदर लग रही है। रूखी सूखी भभूत में वो बात कहाँ जो नग जड़े मांग टीके में है। काले धागे में पिरोए हुए रुद्राक्ष ने आज महीनों बाद मोतियों के हार के लिए रास्ता साफ किया था। अन्य सभी महिलाओं पर कनखियों से एक हल्की सी नजर मार के वो आश्वस्त थी कि आज के समारोह में दुल्हन के बाद दूसरी सबसे आकर्षक सुंदरी निसंदेह वह स्वयं ही है। बारात के स्वागत वाले मोतीचूर लड्डू से लेकर चटपटे पानी के बताशों के द्वितीय दौरे तक तो ये भ्रांति कायम रही। लेकिन जैसे ही यकायक शामियाने में दुल्हन की संडीला वाली मामी का पदार्पण हुआ, सरला के लिए सारे पकवान फीके से हो गए। वो जगमगाती बनारसी साड़ी, वो अद्भुत अद्वितीय अनुपम साड़ी, साड़ी नहीं ब्रह्मांड के सबसे कुशल बुनकर की सबसे उत्कृष्ट रचना। सरला के चेहरे का रंग ऐसा उड़ा जैसे आंधी में एक सूखा पत्ता। वो गहरा लाल, पके रसीले टमाटर वाले लाल में चुटकी भर देसी गुलाब वाला लाल मिलाकर धीमी आंच पर घंटों खौलाकर तैयार किया गया वो गाढ़ा लाल, एक पल में सरला के गालों की लाली छीन गया। घर लौटी तो हाल कुछ यूं था कि वाणी की मधुरता फाख्ता हो चुकी थी, मिजाज कुछ चिड़चिड़ा सा मालूम होता था। उसके भीतर कुछ तो विचलित हुआ था, और ऐसा विचलित हुआ था कि हफ्तों बाद भी रातों की नींद उड़ी रही। दिन भर जहन में केवल वही बनारसी साड़ी छाई रही। रोजमर्रा के कामों में मन नहीं लगता, ना व्रत अनुष्ठान में पहले जैसी रुचि रही। सरला अपना कष्ट बताती भी तो किसे, और बताती तो क्या कि वो त्याग की महान प्रतिमूर्ति आज एक अदना सी भौतिक वस्तु, एक 6 गज की साड़ी के माया जाल में ऐसी फंसी है कि मानो फेफड़ों से सांस ही गायब हो। कि उसकी देह तो घर लौट आई लेकिन चित्त वहीं दावत में छूट गया। कि इतने दिनों तक कठिन संघर्ष करने के बाद भी वो साड़ी जीत रही है और सरला का वैराग्य घुटने टेक रहा है। दिन बीतते गए पर उसके सर पर उस साड़ी का बुखार ज्यों का त्यों चढ़ा रहा। सरला ने अब योग ध्यान से कुछ विमुख होकर स्वयं को गृहस्थी में झोंक दिया था, और करती भी क्या, विवश जो थी। जब भी ध्यान में बैठने का प्रयास करती, मन के रुपहले पर्दे पर मनमोहक लाल बनारसी साड़ियों की नुमाइश लग जाती। कभी श्रावण की ठंडी बयार में साड़ी का पल्ला लहराने लगता, कभी उसी साड़ी को भिन्न भिन्न ढंगों से पहनने की तरकीबें सूझने लगती। जाहिर है ऐसे में परमात्मा का चिंतन असंभव था। खैर, गृहस्थी के कुछ काम निपटाने एक दिन सरला का बाजार जाना हुआ। मंडी से शाक भाजी भरकर घर की ओर लौट चलने के बजाय वह सहसा कपड़ा बाजार की ओर बढ़ने लगी, जैसे कोई रहस्यमय ताकत उसे उस दिशा में बहाए लिए जा रही हो। ये बहाव उसे किस गंतव्य तक पहुंचाने आया था, इस बात से सरला पूर्णतया अनभिज्ञ थी। कठपुतली की भांति चलते चलते उसने अचानक खुद को साड़ियों की दुकानों से घिरा पाया। जैसे ही कुछ होश आया, नजर नाक की सीध में उठी तो देखा कि कांच के अंदर एक पुतले पर लिपटी वही लाल बनारसी साड़ी थी जिसने सरला को एक अरसे से मंत्रमुग्ध सा कर रखा था। एक पल को वो भौचकी रह गई। अब ना कुछ सोचना था, ना देखना समझना। शायद जीवन में पहली बार सरला ने तन मन बुद्धि भावना ऊर्जा अस्तित्व के हर स्तर पर ऐसी एकाग्रता का अनुभव किया था। लेश मात्र संकोच किए बिना उसने दुकान में प्रवेश किया। ना धन के अपव्यय का ही ख्याल आया और ना किसी अन्य साड़ी पर दृष्टि डालने का। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि घर लाते ही उस सुप्रतिम साड़ी को थैले में लिपटे हुए ही सीधे अलमारी में ठूंस दिया गया, और ऐसा

0: क्योंकि अगले 2-2.5 महीने तक वह ज्यों की त्यों उपेक्षित सी वहीं पड़ी रही। कहते हैं मानव के मन को समझना कठिन है, और मानव कहीं स्त्रीलिंग हो तो लगभग असंभव। यूं तो सरला ने बचपन से कई बार सुना था कि इच्छा ही मनुष्य के समस्त दुखों का कारण है। यहां तक कि उसका अनुभव भी यही था कि इच्छा पूर्ति सुख नहीं, बल्कि सुख की एक झूठी क्षणिक भ्रांति लाती है। वह भ्रम टूटते ही बाकी रह जाती है एक गहरी उदासी, जिससे हर व्यक्ति अनंत काल से परिचित रहा है, अपनी दुर्बलता, लाचारी और पराधीनता के बोध से भरी उदासी। हर छोटी बड़ी अभिलाषा के पूरा होने पर जो संतोष अपेक्षित था, वो एक झलक दिखाकर फिर उसी उदासी में कहीं समा जाता है। आज ये उदासी सरला का सेकंड हैंड ज्ञान नहीं, एक व्यक्तिगत अनुभूति थी। तो प्रश्न ये उठाया गया था कि क्यों वो साड़ी अलमारी में उपेक्षित पड़ी रही। ये साड़ी प्रतीक थी उस आत्मसंयम के खोखलेपन की, जिसके झूठे प्रदर्शन पर सरला की सामाजिक प्रतिष्ठा की नींव खड़ी थी। वो योग, ध्यान, धर्म, अध्यात्म से जुड़ा तादात्म्य अब मिथ्या जान पड़ता था। वह साड़ी साड़ी नहीं रही थी, सरला के गले का फंदा बन गई थी। तो अब इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं कि क्यों उस अलौकिक सौंदर्य वाली पके रसीले टमाटर जैसे गहरे लाल वर्ण की रेशमी बनारसी साड़ी को उसी थैली में लिपटे लिपटे एक अन्य चमकीले कागज में दोबारा लपेट के चचिया सास की नई बहू को मुंह दिखाई पर भेंट स्वरूप सौंप दिया गया। अंधभोग में अंतर्निहित पीड़ा की स्मृतियां काफी समय तक सरला देवी के मन में स्पष्ट रहीं। फिर करीब 3-4 महीने बाद किसी शानदार उत्सव में ब्रह्मांड के सबसे कुशल जवेरी की सबसे उत्कृष्ट रचना पर सहसा नजर पड़ी।
1: हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे तान्या अवस्थी की कहानी भोग और त्याग।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:10 हुए हैं और प्रस्तुत है सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अदिति शुक्ला के गाए कुछ भजन। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं सूरदास की लिखी इस भक्ति रचना के साथ। स्वर है अदिति शुक्ला का।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं अदिति शुक्ला की गायक उच्च भजन। और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए तुलसी दास का लिखा ये भजन, आवाज है अदिति शुक्ला की।

0: सुगम संगीत के आज के कार्यक्रम में आपने आनंद लिया। अदिति शुक्ला के गाए भजनों का आपके साथ संग करता थे ढोलक पर दीन दयाल तिवारी, हारमोनियम पर चंद्रेश पांडे, बांसुरी पर अलका सिंह और ऑक्टोपैड पर प्रखर प्रताप सिंह। और इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। अलका याग्निक और अमित कुमार का गाया गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है नरसिम्हा।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म यस बॉस में। गीत के बोल लिखे जावेद अख्तर ने और संगीत निर्देशन था जतिन ललित का। और इसी के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: सो गया। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमेरिका ने कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमेरिकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। अरब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि 1 लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध

0: आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूक्वाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
1: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
2: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। यह अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
3: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक

0: बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है, आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा, और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
2: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील है। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रखा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा, ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र

मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक के गाए कामचोर फिल्म के इस गाने के साथ। गीत इंदिवर का है, संगीत राजेश रोशन का।

आइए सुनते हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में पिघलता आसमान फिल्म का गाना। गीत माया गोविंद ने लिखा है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना आत्मा राम फिल्म से है। इसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। गीत विश्वेश्वर शर्मा का है। संगीत है शंकर जयकिशन का।

आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में हम सब उस्ताद हैं फिल्म का गाना। गीत असद भोपाली ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए स्वयंवर फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, गीत गुलजार का है, संगीत राजेश रोशन का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवेरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था, वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विमल रॉय के पिता हेमचंद्र रॉय की पूर्वी बंगाल के सुआपुर में जमींदारी थी, जो आज के बांग्लादेश का हिस्सा है। बचपन की पढ़ाई लिखाई हुई थाना धामराय के अरमानी टोला स्कूल में। बचपन में विमल दा को चित्रकारी करने और वायलिन बजाने का शौक था। उन दिनों सुआपुर की जमींदारी में दुर्गा पूजा के मौके पर मंचित किए जाने वाले नाटकों में भी विमल रॉय भाग लिया करते थे। इन्हीं में से एक नाटक था मिस्र कुमारी। 1957-58 में इसी कथा को विमल दा ने सेल्यूलॉयड पर उतारा था। यह फिल्म थी यहूदी।

बिमलदास जिन दिनों ढाका के जगन्नाथ कॉलेज में पढ़ रहे थे, पिता हेमचंद्र रॉय का देहांत हो गया। जमींदारी की देखभाल करने वाले मैनेजर ने अमानत में खयानत करते हुए जमीन जायदाद हड़प ली और बिमलदास का परिवार सब कुछ लुटाकर खाली हाथ कोलकाता चला आया।

वक्त की इस बेरहम मार से घायल बिमलदा को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर परिवार के लिए रोजी रोटी जुटाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। दक्षिण कोलकाता के चक्रबेदिया रोड पर उन्होंने एक किराए का मकान ले लिया और संघर्ष में जुट गए रोजी रोटी के।

बिमल दा रोज ही न्यू थिएटर्स और अन्य स्टूडियोज के चक्कर काटने लगे। बस किराए के पैसे बचाने के लिए पैदल चलते। खैर, न्यू थिएटर्स में बिमल दा संपर्क में आए प्रमथेश बरुआ के, जिन्होंने बिमल दा को फिल्म अधिकार की स्टिल पब्लिसिटी से संबंधित काम की जिम्मेदारी सौंपी। न्यू थिएटर्स में बिमल दा फिर नितिन बोस के सहायक हो गए और न्यू थिएटर्स में ही उन्होंने सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ निर्देशन की बारीकियां सीखी। सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम करते हुए बिमल दा ने न्यू थिएटर्स की जिन फिल्मों को सेल्यूलॉइड पर उतारा वो थी गृहदाह, माया, मुक्ति, बड़ी दीदी, अभिनेत्री और प्रमथेश चंद्र बरुआ निर्देशित देवदास।

न्यू थिएटर्स के श्रेष्ठतम छायाकारों में शामिल बिमल दा अपने अनुभवों के आधार पर फिल्म निर्देशन में अपनी प्रतिभा को आजमाना चाहते थे। जल्द ही उन्हें मौका मिला और उन्होंने न्यू थिएटर्स के लिए निर्देशित की फिल्म उदयर पौथे। फिल्म की नामावली में स्थापित नाम थे कंपोजर आरसी बोराल और तत्कालीन बांग्ला रंगमंच के नामी कलाकार विश्वनाथ भादुड़ी के। कई लोगों ने इस फिल्म के बुरी तरह फ्लॉप हो जाने की भविष्यवाणी कर डाली। फिल्मों से जुड़े लोगों और समीक्षकों ने भी इसके विरोध में ही विचार व्यक्त किए। 1 सितंबर 1944 को फिल्म उदयर पौथे कोलकाता के चित्रा सिनेमा घर में रिलीज हुई और इस फिल्म ने न्यू थिएटर्स की पहले की सभी फिल्मों की कामयाबी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चित्रा सिनेमा घर में यह फिल्म एक वर्ष तक हाउसफुल चली। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसका हिंदी संस्करण बनाया गया हमराही। इसके बाद बिमल दा ने जो दो और फिल्में निर्देशित की वो बुरी तरह असफल रहीं। फिल्में थी अनजानगढ़ और मंत्रमुग्धा। न्यू थिएटर्स के लिए उन्होंने आखिरी फिल्म निर्देशित की पहला आदमी, जिसके प्रीमियर के लिए बिमल दा जब मुंबई आए तो दादर के चेतना सिनेमा में उनकी मुलाकात हुई अपने मित्र हितेन चौधरी से, जिन्होंने सावक बाचा और अभिनेता अशोक कुमार को बिमल दा के नाम की सिफारिश की फिल्म निर्देशन के लिए। और इस तरह मुंबई में बिमल दा ने बॉम्बे टॉकीज के लिए पहली फिल्म निर्देशित की मां। यह फिल्म जिस अमरीकी फिल्म से प्रेरित थी वो थी ओवर द हिल्स। लीला चिटनिस को दी गई मुख्य भूमिका और रोमांटिक लीड में अनुबंधित किया गया तब की एक जूनियर आर्टिस्ट मीना कुमारी को, जिनके बदले बाद में श्यामा को रख लिया गया और उनके नायक बनाए गए भारत भूषण। मुंबई में अपनी इस पहली फिल्म के लिए बिमल दा को मिले कोई 25,000 रुपए। इस बीच अभिनेता अशोक कुमार बॉम्बे टॉकी से नाता तोड़ चुके थे। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति परिणीता के अधिकार उनके पास थे। अशोक कुमार यानी दादा मुनि ने परिणीता के निर्देशन के लिए बिमल दा को अनुबंधित कर लिया। यह फिल्म बेहद कामयाब रही और बिमल दा की प्रतिभा को मिला सम्मान और सराहना।

भारतीय महानगरों में यूरोपीय सिनेमा की चर्चित फिल्में भी दिखाई जाने लगी थी, जिनके माध्यम से भारतीय फिल्मकार परिचित हुए। डीसिका, रोजेलिनी और कुरुसावा जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के फिल्मकारों की कृतियों से एक दिन बिमलदा, ऋषिकेश मुखर्जी और एक दो अन्य साथी मुंबई के इरोस थिएटर में फिल्म रोशमोन देखकर बेस्ट की डबल डेकर बस से मालाड लौट रहे थे। सब खामोश थे। ऋषिदा के

0: में सवाल उठ रहा था, ऐसी फिल्म हम क्यों नहीं बना सकते। उन्होंने बिमलदास से अपने मन की बात कही। बिमलदास ने फौरन कहा, लिखेगा कौन। खैर, आपसी बातचीत के बाद तय हो गया कि ऐसी एक फिल्म बनाई जाएगी। और इस तरह रोशमोन की प्रेरणा से बेस्ट की डबल डेकर बस में जन्म हुआ बिमल रॉय प्रोडक्शंस का। इस बैनर की पहली फिल्म थी दो बीघा जमीन। फिल्म दो बीघा जमीन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इसी शीर्षक की एक कविता से प्रेरित थी, जिसे लिखा था सुप्रसिद्ध संगीतकार सलिल चौधरी।
1: गुरु तक तक तक तक तगन तगन गिन गिन रे, जग जग जग जग जग

सन 1953 में यह फिल्म केवल 4 हफ्तों के लिए मुंबई के मेट्रो थिएटर में रिलीज की गई, जहां इसके प्रीमियर में आए फिल्म इंडस्ट्री के नामी गिरामी सितारे। फिल्म के प्रीमियर के आंखों देखा हाल की रेडियो के लिए कॉम्पेयरिंग कर रहे थे बलराज दत्त यानी जाने माने अभिनेता सुनील दत्त।

दो बीघा जमीन को हालांकि उदेर पौधे जैसी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस फिल्म की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। चीन और तत्कालीन सोवियत संघ में भी इस फिल्म को सराहा गया। 1954 में कान फिल्म महोत्सव में इसे सोशल प्रोग्रेस के लिए मिला कार्लोवी वेरी पुरस्कार। ब्रिटिश अखबार मैनचेस्टर गार्जियन और न्यू क्रॉनिकल में भी समीक्षकों ने इस फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा की। निरूपा रॉय और बलराज साहनी के अभिनय, शैलेंद्र के गीतों, सलील चौधरी के संगीत और बिमल दा के निर्देशन ने दो बीघा जमीन को बना दिया हिंदी सिनेमा का एक मास्टरपीस।

लेकिन नौकरी असफल रही। बिमलदा अपने बैनर के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। 1954 में बिमलदा ने अपने दोस्त हितेन चौधरी के लिए फिल्मांकन किया विराज बहु का। अपने बैनर के लिए बिमलदा ने शरद बाबू के उपन्यास देवदास के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसी उपन्यास पर प्रमथेश बरुआ की फिल्म का छायांकन बिमलदा ने ही किया था, जिसमें नायक थे कुंदनलाल सहगल।

अपने बैनर तले निर्मित की जाने वाली फिल्म देवदास में पारो और चंद्रमुखी की भूमिकाओं के लिए विचार किया गया नरगिस और मीना कुमारी के नामों पर, लेकिन चुना गया सुचित्रा सेन और वैजयंती माला को। नायक की भूमिका के लिए चुने गए दिलीप कुमार। चुन्नीलाल की भूमिका दी गई मोतीलाल को। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।

0: बिमल रॉय प्रोडक्शंस का भविष्य इस फिल्म के जरिए दांव पर लगा हुआ था। '58 में निर्मित पुनर्जन्म पर आधारित फिल्म मधुमति बेहद कामयाब रही और मधुमति ने बिमल रॉय प्रोडक्शंस को गहरे आर्थिक संकट से निकालकर किनारे पहुंचा दिया।
1: मैं

बंदिनी बिमलदा की एक और बेहतरीन कृति है। नूतन अशोक कुमार और धर्मेंद्र अभिनीत ये फिल्म हिंदी सिनेमा की अनमोल धरोहर है। इसी फिल्म से बतौर गीतकार शुरुआत की थी गुलजार ने।

बिमल दा ने बाहर के जिन बैनरों की फिल्में निर्देशित की वो थी अनजानगढ़, मंत्रमुग्धा, जिसमें उनके सह निर्देशक थे सुदीश घटक, इनके अलावा पहला आदमी, माँ, परिणीता, विराज बहु, बाप बेटी और यहूदी। बतौर कैमरामैन और सहायक कैमरामैन उनकी डॉक्यूमेंट्रीज थी हाउ केरोसिन टिन्स आर मेड, ग्रैंड ट्रंक रोड और बंगाल फैमी। बतौर कैमरामैन बिमल दा ने जिन कथा फिल्मों का छायांकन किया उनके नाम हैं मीरा, गृहदाह, नाला थांगल, देवदास, माया, मुक्ति, चंबे दी गली, बड़ी दीदी, अभिनेत्री, उदयर पौथे और हमराही। हमराही उदय पौथेर का ही हिंदी

संस्करण थी। विमलदा की अधूरी फिल्म सहारा को उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने चैताली नाम से पूरा किया। विमलदा एक और फिल्म बनाना चाहते थे, अमृत कुंभेर सौंधाने, लेकिन यह फिल्म एक सपना बनकर ही रह गई। 8 जनवरी सन 1966 को विमलदा की जिंदगी की रील चलते चलते थम गई। जिंदगी मौत की बंदिनी बन गई। विमलदा नहीं रहे, लेकिन अपनी महान कृतियों के रूप में वो जो कुछ छोड़कर गए हैं उसके लिए सिनेमा उनका सदैव ऋणी।

0: ये आकाशवाणी है।
1: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज प्रस्तुत है श्री कुमार मर्डुर का गायन। संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार पा चुके कुमार मर्डुर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रखर गायक के रूप में जाने जाते हैं। किराना और ग्वालियर घराने की गहरी समझ के साथ साथ अपने पिता पंडित सोमनाथ मर्डुर से मिली तालीम ने उनकी गायकी को एक अनोखा अंदाज दिया है। दिग्गज उस्तादों की प्रेरणा से सजी उनकी इस गायकी में जयपुर, अतरौली और अन्य घरानों की झलक भी मिलती है। एक बहुमुखी कलाकार और संगीतकार के रूप में कुमार मर्डुर ख्याल, ठुमरी, हिंदी भजन, मराठी अभंग, कन्नड़ दास साहित्य, कन्नड़ वचन साहित्य और कई अन्य संगीत परंपराओं का अन्वेषण करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार कुमार ने देश भर के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुति दी है।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय श्री कुमार मर्डुर। Awarded the Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar by the Sangeet Natak Academy, Kumar Mardur stands out as a gifted Hindustani classical vocalist. His grounding in the Kirana and Gwalior Gharanas, along with training under his father Pandit Somnath Mardur, has led to a unique gaiki that weaves in elements from Jaipur Atrauli and other Gharanas, built on deep riyas and inspiration from legendary maestros. A multifaceted performer and composer, Kumar explores khayal, thumri, Hindi bhajans, Marathi abhangs, Kannada dasa sahitya, Kannada vachana sahitya and many other traditions. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Kumar has performed throughout the country in various prestigious concerts.
1: Aaj ke is karyakram mein aapke saath tabla par Pandit Satlingappa Desai Kallur aur हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे हैं। श्री कुमार मर्डुर अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग छायानट से कर रहे हैं। विलंबित झुमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरी मालनिया, द्रुत तीन ताल तराना।
2: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री पंचाक्षरी हिरेमठ। श्री कुमार मर्डुर विल बिगिन हिज वोकल रिसाइटल विद राग छायानट, विलंबित झुमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरी मालिनिया, फॉलोड बाय तराना इन द्रुत तीन ताल।

0: अभी आपने सुना राग छायानट। अब श्री कुमार मल्डोर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती कराता।
1: यू जस्ट हर्ड राग छायानट। श्री कुमार मल्डोर विल नाउ प्रेजेंट राग बागेश्री। विलंबित एकताल सखी मना लागेना, द्रुत एकताल बिनती करता।

0: बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मरडूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: That was राग बागेश्री। With that, we come to the end of tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremat.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: Of tonight's Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremat.
1: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.
0: This program was earlier recorded at Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.
2: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है. रात्रि के 11 बजने को है. थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से.
3: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार. भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए. विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है.
4: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके. विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए. भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है. पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है. ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है. सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी.
3: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है. ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है. अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं. ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए. ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया. इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा. हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है. इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे. दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं. गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फू कॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है. इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं. देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया. इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया. इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया. इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है. इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में

कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के ऑर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।